0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है, सुबह के 6 बजने को है। समाचार अब हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13

0: भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले करते हैं मातृभूमि की आराधना।

समूह स्वर में ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे आप। रचना थी अलम्मा इकबाल की। आइए अब सुनते हैं ये पारंपरिक भक्ति गीत। गायन स्वर हैं शोभना चटर्जी के।

शोभना चटर्जी के गायन स्वर में आप सुन रहे थे ये पारंपरिक भक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौड़वाल का गाया ये अगला भक्ति गीत। रचना है गोस्वामी तुलसीदास की।

पर में आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत, रचना थी गोस्वामी तुलसीदास की, संगीत दिया था शेखर कल्याण ने। आइए अब आपको सुनाते हैं अनूप जलोटा के गायन स्वर में कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत।

अनूप जलोटा के गायन स्वर में आप ये मेरा भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम में जाते जाते आपको सुनाते हैं ये अगला भक्ति गीत। गायन स्वर हैं शर्मा बंधुओं के।

0: शर्मा बंधु, गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा, कौशलेंद्र शर्मा, राघवेंद्र शर्मा, इनके गायन स्वरों में आप ये भक्ति गीत सुन रहे थे। रचना थी पंडित रमानंद शर्मा की, संगीत दिया था शर्मा बंधुओं ने। इसी गीत के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं विचार बिंदु। आज का आलेख है संघर्ष। संकलन और वाचन स्वर मृदुल वर्मा के।
1: संघर्ष एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में कठिनाइयों, चुनौतियों और निरंतर प्रयास की छवि उभरती है। वास्तव में जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिस दिन मनुष्य संघर्ष करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी प्रकृति रुक जाती है। प्रकृति का प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्रक्रिया हमें संघर्ष का महत्व सिखाती है। यदि हम अपने आसपास दिखेंगे तो पाएंगे कि एक छोटा सा बीज भी वृक्ष बनने के लिए संघर्ष करता है। वह मिट्टी की कठोर परतों को चीरकर बाहर निकलता है, धूप, वर्षा और तूफानों का सामना करता है, तभी कहीं जाकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। इसी प्रकार नदी भी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों और बाधाओं को पार करते हुए समुद्र तक पहुँचती है। प्रकृति का यह संदेश स्पष्ट है कि बिना संघर्ष के विकास संभव नहीं है। मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्षों से भरा रहता है। बचपन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष, युवावस्था में रोजगार और पहचान बनाने का संघर्ष तथा वृद्धावस्था में स्वास्थ्य और सम्मान बनाए रखने का संघर्ष। जीवन के हर चरण में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह चुनौतियां हमें मजबूत और अनुभवी बनाती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया के सभी महान व्यक्तियों ने संघर्ष का मार्ग अपनाकर ही सफलता प्राप्त की है। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए अनेक कष्ट और यातनाएं सहन की। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष ने पूरे देश को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। इसी प्रकार APJ अब्दुल कलाम का जीवन भी संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी है। साधारण परिवार में जन्म लेने वाले कलाम जी ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा प्राप्त की और अपनी मेहनत तथा लगन से भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि व्यक्ति में दृढ़ निश्चय हो तो वह किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। संघर्ष का अर्थ केवल बाहरी समस्याओं से लड़ना नहीं, कई बार सबसे बड़ा संघर्ष अपने भीतर की कमजोरियों, भय, आलस्य और नकारात्मक विचारों से होता है। जब कोई व्यक्ति अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, अपनी कमियों को सुधारता है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, तब वह वास्तविक संघर्ष करता है। आज के युवाओं के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार की तलाश, आर्थिक दबाव, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाएं, ये सभी जीवन को कठिन बनाती है। कई बार असफलता मिलने पर निराशा घेर लेती है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि असफलता सफलता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक विद्यार्थी जब किसी परीक्षा में असफल होता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला कि वो हार मान ले और प्रयास करना छोड़ दे। दूसरा, अपनी गलतियों से सीखकर पुनः मेहनत करे। जो विद्यार्थी दूसरा रास्ता चुनता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। यही संघर्ष की वास्तविक भावना है। संघर्ष आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं तो हमारे भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। हमें लगता है कि यदि हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं तो भविष्य की चुनौतियों का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी

0: है कि यह हमें विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वह दूसरों के दुख और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझता है। उसके भीतर संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास होता है। इसलिए संघर्ष केवल सफलता ही नहीं देता बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों के बावजूद अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति शारीरिक विकलांगता के बावजूद खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, कोई आर्थिक अभाव के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो कोई विपरीत कठिनाइयों का सामना करते हुए भी परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा है। ऐसे लोगों की कहानियां हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने वे टिक नहीं सकती। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, सूर्योदय निश्चित है। संघर्ष के क्षण अस्थाई होते हैं लेकिन उनसे मिलने वाला अनुभव और सफलता स्थाई होती है। यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि जिन उपलब्धियों पर हमें सबसे अधिक गर्व होता है वे अक्सर उन्हीं संघर्षों का परिणाम होती हैं जिन्हें हमने साहस और धैर्य के साथ पार किया था। इसलिए संघर्ष से घबराने की बजाय उसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि वही हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराती है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कभी नहीं डरेंगे, असफलताओं से निराश नहीं होंगे और निरंतर प्रयास करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है और वही हमें एक बेहतर, मजबूत और सफल इंसान बनाती है।
1: संघर्ष, ये आलेख अभी आप सुन रहे थे, संकलन और वचन स्वर थे मृदुल वर्मा के। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर, प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का गायन। आज के प्रसंग में मुख्य गायन स्वर हैं श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे के। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड 102 102

श्रीराम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

0: ये था गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे के। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है खेती की बात। आज जानिए अन्न भंडारण की विधि।
1: बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। यह प्रगति राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सुधार लाती है, परंतु यह चिंता का विषय है कि तकनीकी ज्ञान के अभाव में एवं त्रुटिपूर्ण अन्न भंडारण के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है। भंडारण की उचित व्यवस्था एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जो लोगों के मुँह तक नहीं पहुँच पाता। यदि किसान के स्तर पर भंडारण के दौरान होने वाली हानि के कुछ भाग को रोका जा सके तो निश्चित रूप से खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। 15% नमी युक्त अन्न को 3 माह तक इसी अवस्था में संचय करके रखने पर लगभग 30% पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है एवं अनेक जीव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण खाद्यान्न में क्षय होने लगता है। अतः अन्न संसाधन एवं भंडारण व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। गेहूं, धान, अरहर, मसूर, उड़द व मूंग वगैरह रोजाना खाने से जुड़े ऐसे अनाज हैं जिन्हें उपजाकर किसान खुद भंडारित करते हैं या फिर वे कारोबारियों या सरकार द्वारा गोदामों में स्टोर किए जाते हैं ताकि लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके। अनाजों का सही भंडारण बहुत जरूरी है, क्योंकि भंडारण के दौरान बहुत से कीट जैसे घून, सूढ़ी, पतंगा, दूसरे जीव जैसे फफूंदी व चूहे वगैरह अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अनाज गोदाम में रखने से पहले गोदाम, कोठार वगैरह की भली भांति सफाई करनी चाहिए। ऐसा करने से भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर कीटों का हमला कम होता है। अगर गोदाम के अंदर व आसपास चूहों के बिल हों तो उसे हटा देना चाहिए। नए अनाज का पुराने अनाज के साथ मिलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। हर साल अनाज को रखने से पूर्व गोदाम को चूने से पोताई अवश्य करनी चाहिए। इससे कीट व बीमारियों का प्रकोप कम होता है। अनाज को रखने से पूर्व गोदाम को किसी धूमक या धुआं छोड़ने वाली मशीन से उपचारित करना चाहिए। अनाज को गोदाम में रखने के लिए दानों को 8-10% की नमी में रखा जाए तो कीटों का प्रकोप कम होता है। साथ ही अनाज के सड़ने व उसमें फफूंदी लगने की संभावना कम हो जाती है। जमीन के नमी को अनाज में आने से रोकने के लिए बोरियों को लकड़ी के तख्तों पर विधासी पॉलीथीन की चादर के ऊपर रखना चाहिए। यह इंतजाम दीवार से कम 50 सेंटीमीटर व फर्श से भी 50 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अनाज से भरी जूट की बोरियों की सतह पर कीट रसायन का छिड़काव करने से भी अनाज को कीटों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। इसीलिए DDVV नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए अथवा मेलाथियान नामक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। भंडार की दावातों को कोलतार से लगभग 1.5 मीटर ऊंचाई तक अच्छे से पेंट करना चाहिए, जिससे दरारों में मौजूद कीट व अंडे बाहर न निकल पाए। अगर गोदाम में पहले से कीट के होने का अंदेशा हो तो छतों व दीवारों पर 0.5% मेलाथियान के घोल का 3 लीटर प्रति 100 वर्ग लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यदि गोदाम का फर्श सीमेंट का है तो 5% कार्बोलिक एसिड से धोकर सुखा लें। EDCT 1 मिलीलीटर प्रति घन मीटर स्थान की दर 24 घंटे तक धुआं करना चाहिए। अगर बोरों को इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो इनको भी कीटनाशी से उपचारित करके ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। जैसे जहां तक संभव हो तो भंडारण के लिए नए बोरों को ही प्रयोग में लाना चाहिए। अनाज को कड़ी धूप में सुखाकर थोड़ी देर छायादार जगह में रखकर ही गोदाम

0: में रखना चाहिए। समय समय पर भंडारित अनाज को देखते रहना चाहिए। एल्युमिनियम फास्फाइड जो पाउच के रूप में बाजार में मिलती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा 1 क्विंटल अनाज के लिए पर्याप्त होती है, जिससे घुन से सुरक्षा होती है। खाद्यान्न को रखने के बाद गोदाम को अच्छी तरह से सील कर बंद कर देना चाहिए। वर्षा काल में गोदाम को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। कुछ पुराने तरीकों को भी अपनाकर भंडारण में नुकसान से बचा जा सकता है, जैसे 0.5 किलो प्याज प्रति बोरी रखने से घुन व चींटी का प्रकोप नहीं होता। जंगली तुलसी, गुल सितारा, नीम आदि की पत्तियों को रखने से भी अनाज में कीट नहीं लगते। अनाज को वैज्ञानिक विधि से भी भंडारित किया जा सकता है। धातु की कोठी या कोठियों के अनेक प्रकार हैं। आवश्यकता अनुसार कोठियों का चयन किया जा सकता है। ये बनावट में मजबूत होती है, इनकी छत ढलवा होती है, इनके ऊपर अनाज भरने के लिए एक द्वार होता है। इस प्रकार की कोठियों में 3 से 10 क्विंटल तक अनाज रखा जा सकता है। इन कोठियों के मुख्य द्वार तथा तल द्वार दोनों में ताला लगाया जा सकता है। सीमेंट की पक्की कोठी का भी इस्तेमाल भंडारण के लिए किया जा सकता है। यह कोठी ईंट, सीमेंट व कंक्रीट के साथ मिलाकर बनाई जाती है, जिससे आमतौर पर 2 टन अनाज आता है। इन कोठियों को 2 या 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिससे अलग अलग किस्म के अनाज रखने की व्यवस्था रहती है। सीलन से बचाए हुए इसके सभी दीवारों पर सीमेंट करने से पहले पॉलीथीन बिछा देना चाहिए।
1: अन्न भंडारण की विधि, इस विषय पर खेती की बात अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब आइए आपको बता दें आज के हमारे मुख्य आकर्षण।

आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। आज सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम गूंजे जंगल, जिसमें छत्तीसगढ़ी सदरी और सरगुजिहा बोली में अलग अलग लोकगीत आपको सुनाएंगे हम। सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का होगा प्रसारण। सुबह 8:30 पर आज हम लेकर आएंगे कार्यक्रम परिक्रमा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार, वाचन और प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडे का। सुबह 9 बजे सुनिएगा बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। सुबह 10 बजे आज हम आपके लाएंगे फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपकी बात आपके गीत। संकलन करेंगे अक्षय रंजन वर्मा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनेगा सुबह 11:05 पर। दोपहर 12 बजे सुनेगा CIET और NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर को साइन, इसमें मशरूम की खेती से आर्थिक लाभ इस विषय पर चर्चा सुनिएगा। साथ ही इसमें आप सुनेंगे बहनी कर कहनी। दोपहर 1:40 पर आप सुनेंगे अपना चहेता ईमेल आधारित फरमाइशी

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज दोपहर 2:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत कंधा। जंगली हाथियों से जुड़ी जानकारी और उनके विचरण क्षेत्रों के बारे में प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवाओं की वाणी युववाणी, जिसमें आज आकर्षण का केंद्र है इंद्रधनुष कर्म। शाम 6:20 पर लोक संगीत कार्यक्रम गोधली सुनिएगा। शाम 7:20 पर सुनिएगा चौपाल और रात 8:00 आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। ये थे आज के कुछ मुख्य आकर्षण। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब संस्कृत में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः आईएनएस दुनागिरिः आईएनएस संशोधकः आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे 200+ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सांप्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमंत्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वनकर्मचारिभिः स्थानीयजनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+2000 पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षाव्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+4500 परीक्षाकेन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेषव्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्टपरिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचना एव अनुसरन्तु।

0: इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडुराज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवणघटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचनबलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि-द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम गूंजे जंगल। इस कार्यक्रम में आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं छत्तीसगढ़ी में ये किसानी गीत।

गुलाब सिंह पैगरा और साथियों के स्वरों में ये किसानी गीत आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ी लोकगीत है ये। अब सुनते हैं एक सादरी लोकगीत अलीमा तिग्गा और साथियों के स्वरों में। आइए सुनते हैं ये जलसा गीत।

अलीमा तिग्गा और साथियों के स्वरों में ये सादरी भाषा में जलसा लोकगीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में जाते जाते आपको सुनाते हैं बड़खा साजीन गीत सरगुजिहा बोली में। गायन स्वर हैं लखनदास और साथियों के।

अभी आप सुन रहे थे लखनदास और साथियों का गाया ये बड़खा साजीन गीत सरगुजिहा बोली में। इसी के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम गूंजे जंगल का ये क्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में। शायर थे इब्राहिम अश्क, संगीत से सवारा था भूपेंद्र सिंह ने। अब सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गज़ल चंदन दास और अनुराधा पौड़वाल के आवाज़ों में।

अनुराधा पौड़वाल और चंदन दास की आवाज़ों में ये गज़ल आप सुन रहे थे। शायर थे अजीम मलिक, संगीत दिया था चंदन दास ने। कार्यक्रम में जाते जाते सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। शायर हैं रईस अख्तर, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

0: चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। शायर थे रईस अख्तर, संगीत दिया था जगजीत सिंह ने। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों, सूचना और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक के साथ मैं हूं पौलोमी। आइए नजर डालते हैं पहले समाचार पर। अंबिकापुर से हमें ये प्राप्त हुआ है, मुख्यमंत्री ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारत की सनातन ऋषि परंपरा का अमूल्य उपहार है, जिसने आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन की पद्धति है। जो व्यक्ति आत्मबल, अनुशासन, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग वर्तमान समय की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करती है। तेजी से बदलते जीवन

शैली, बढ़ते तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच योग प्रत्येक आयु वर्ग के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य सुरक्षा का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से सजग और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला होता है। इसलिए योग को केवल आयोजन तक सीमित न रखकर जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा रखे गए प्रस्ताव को रिकॉर्ड समय में व्यापक समर्थन प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि विश्व ने भारतीय ज्ञान परंपरा और योग की उपयोगिता को स्वीकार किया है। 21 जून को पूरी दुनिया जिस उत्साह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, वह भारत के लिए सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक नेतृत्व का गौरवशाली उदाहरण बना। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि योग स्वास्थ्य और आरोग्य की ऐसी विश्वसनीय साधना है जो जीवन के हर चरण में व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। योग शरीर को निरोग, मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव, अनिद्रा और मोटापे जैसी जीवन शैली जनित समस्याओं से बचाव में योग अत्यंत प्रभावित सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी आज योग की उपयोगिता को स्वीकार कर रहा है और इसे बेहतर स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जा रहा है। आइए अब कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये गीत। इसे हमने चुना है फिल्म कभी कभी से। गायन स्वर हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था कभी कभी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत दिया था खयाम ने। अब बढ़ते हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ज़िले की ओर। खरीफ सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने कृषि विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के हितों से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले के किसानों को समय पर खाद, बीज एवं कृषि आदान उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एग्रीस्टेक निर्माण, दलहन तिलहन प्रोत्साहन योजना तथा नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी विषयों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सहकारी समितियों एवं वितरण केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक एवं बीज उपलब्ध रहें तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन कृषि गतिविधियों का महत्वपूर्ण समय होता है, इसलिए मैदानी अधिकारी नियमित रूप से समितियों का निरीक्षण करें और उपलब्धता की स्थिति पर सतत निगरानी रखें। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को खाद एवं बीज वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा गांव स्तर पर सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। इसे हमने चुना है फिल्म पहेली से। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन, आवाजें हैं हेमलता और सुरेश वाडेकर की।

0: फिल्म पहेली का ये गीत आप सुन रहे थे। गायन स्वर थे हेमलता और सुरेश वाडेकर के। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम।
1: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खरखर की आवाज कैसी है?
2: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
1: मतलब
2: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
3: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
1: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
2: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
4: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
5: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
0: फिर एक बार स्वागत है आपका नमस्कार सरगुजा में। और अब बढ़ते हैं अगले सूचना समाचार की ओर। अंबिकापुर से प्राप्त ये समाचार। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 का आयोजन जिले में शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी तथा अभ्यर्थियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। अंबिकापुर शहर में परीक्षा के लिए कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां कुल 5212 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। परीक्षा में 4528 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 86.88% है। वहीं 684 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, जिनका प्रतिशत 13.12 रहा। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। अभ्यर्थियों के प्रवेश, पहचान, सत्यापन, सुरक्षा जांच तथा परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती, संपूर्ण व्यवस्था की सतत निगरानी की गई। जिला प्रशासन ने परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं सफल आयोजन में सहयोग करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, यशुदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम है चित्तचोर। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

अब बढ़ते हैं भरतपुर विकासखंड की ओर। भरतपुर विकासखंड के युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI जनकपुर में डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 22 जून यानी आज से शुरू होगा और इसकी अवधि लगभग 4 माह होगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि महर्षि पतंजलि ने योग के वास्तविक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप को प्रदान किया है। आइए कार्यक्रम में जाते जाते आपको सुनाते हैं अमित कुमार की आवाज में ये अगला गीत। फिल्म का नाम है अनोखा रिश्ता। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत दिया है RD बर्मन ने।

0: अमित कुमार की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अनोखा रिश्ता। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था आरडी परवन ने। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अब मुझे यानी पौलोमी को आज्ञा दीजिए।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

0: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता हो गए ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में

0: 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमरीका

0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
1: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया। ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा

0: सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
3: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personals and tourist guides to learn about their experiences and role in the project. Earlier on Sunday, President Murmu visited the Cheetah Command and Control Center at Kuno. The president viewed an exhibition related to the cheetahs project. Officials informed her that India currently has 52 cheetahs, of which 49 are in the Kuno National Park, while 3 have been shifted to the Gandhi Sagar

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहयोग व वाचन स्वर अंजनी कुमार पांडे के।
1: स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग और विविधा के विविध रंगों से सजी परिक्रमा की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी। आज के अंक में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ संपन्न, बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से लोगों ने किया योगाभ्यास। बारिश की फुहारों ने दी गर्मी से राहत, खुश हैं स्कूली बच्चे। शुरू हुआ वृक्षारोपण अभियान, स्वयंसेवी संस्थाओं का है साझा प्रयास। श्रोताओं, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में सुबह 6 से सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री संजय अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में लुंड्रा विधायक माननीय श्री प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक माननीय श्री रामकुमार टोप्पो, गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, राज्य युवा आयोग अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में नगर के सम्मानित जनों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योगाभ्यास से पहले अतिथियों ने योग के महत्व को रेखांकित किया। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय ने जनसामान्य को संबोधित करते हुए कहा,
2: भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की, वंदे वंदे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायक द्वय श्री प्रबोध मिंज जी, श्री रामकुमार टोप्पो जी, योग आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सज्जनवृंद, मातृ

0: माताएं बहने, युवा साथियों और हमारे मीडिया के मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज राज्य स्तर का ये आयोजन है, इसलिए माँ महामाया की इस पवित्र धरती से मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का दुनिया के लिए अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या और हमारी जीवन पद्धति का परिणाम है। आज जब भाग दौड़, तनाव और अनियमित जीवन शैली बढ़ रही है, तब योग और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। यह थीम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग हर उम्र के व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और सुखी बनाए रखने की शक्ति देता है। योग शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योगासन किए जाने से शरीर में लचीलापन बना रहता है, दिमाग की सजगता भी उसी तरह से बनी रहती है। योग हमारी सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है। योग मन के विकार दूर करता है। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। मैं प्रदेश के युवाओं और बच्चों से अपील करता हूं कि वे अभी से योग से जुड़े। हमने पाठ्यक्रम में योग को इसलिए भी शामिल किया है ताकि बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों से स्वस्थ और सजग रहें। जो लोग अब तक किसी कारण से योग को नहीं अपना सके हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज से ही इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लें। हमारी परंपरा में कहावत है, जब जागो तब सवेरा, तो शुभ काम को अपनाने के लिए कभी विलंब नहीं होता है। योग स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने की वैसी ही गारंटी है जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, जो 100% खरी उतरती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के जन जन तक पहुंचाया। योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा है। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिणाम है कि बहुत कम समय में दुनिया ने इसे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे नगरों तथा छोटे छोटे नगरों तक योग का संदेश पहुंच रहा है। यह भारत की संस्कृति और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह समय आपके स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनेगा। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि इस योग को अपने दिनचर्या का उसको हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस योग को पूरे प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम भी आप सब लोग करेंगे, ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह होगा। और एक बार आप सभी लोगों को, भारी संख्या में यहाँ पर आज इस आयोजन में आप सब लोग शामिल हुए हैं, आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
1: सुबह 7:30 बजे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के विशाल प्रांगण में बहुत ही खुशनुमा और गौरवशाली माहौल था। भव्य पंडालों में लगभग 3,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया।
2: संजाना उपासते

0: शांति शांति शांति ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए हम सब लोग योग अभ्यास के लिए खड़े होंगे, खड़े हो जाइए और सर्वप्रथम ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा चालन हर अभ्यास को दो दो बार दोहराएंगे, हमारे प्रशिक्षकों को देखकर करेंगे। गर्दन सामने की ओर, पुनः सांस भरते हुए पीछे की ओर। सेकेंड पोल, गर्दन दाईं ओर।
1: लगभग एक घंटे चले इस योगाभ्यास सत्र के बाद प्रसन्न मन से लोगों ने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया और इस प्रकार 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपन्न हुआ। पिछले एक दो दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। सभी की चिंताएं थीं कि स्कूल खुलेंगे तो भीषण गर्मी में बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, लेकिन अब जबकि धूप और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है तो लोग भी खुश हैं और बच्चे भी।
2: आपका नाम?
3: जी, मेरा नाम अभिज्ञान है।
2: अभिज्ञान, मौसम में थोड़ा बदलाव है, आपको कैसा लग रहा है?
3: जी, पहले के मुकाबले मौसम में जो बारिश और बादल का बदलाव आया है, इस बदलाव के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो हमें इस मौसम में पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है।
2: पहले क्या सोचते थे कि स्कूल खुलेगा तो कैसे जाएंगे?
3: पहले तो बस टेंशन ही रहती थी कि स्कूल खुलेगा तो इतने गर्मी में हम जाएंगे कैसे, गर्मी में आना जाना करने। मान लीजिए हम स्कूल तो चल जाएंगे, सुबह सुबह स्कूल जाना रहता है, ठंडियाँ लगती रहती है, सुबह धूप भी नहीं रहती है, इतने स्कूल पहुंच जाएंगे, वापस आते टाइम 1-2 बजे जब हम घर के लिए निकलते हैं तो इतनी तेज धूप सीधा सर पर पड़ेगी, वो थोड़ा दिक्कत पहुँचा सकती थी।
1: श्रोताओं, बारिश की शुरुआत होते ही एक ऐसे अभियान की शुरुआत होती है जिसका धरती के पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान होता है। जी हां, इस अभियान का नाम है वृक्षारोपण अभियान। इस साल भी यह अभियान शुरू हुआ है। अनेक सामाजिक संस्थाओं ने समूह बनाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की है। इस संपूर्ण कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करने वाले वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री मंगल पांडेय से हमने बातचीत की।
4: हम लोग सरगुजा जिले की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस साल की गर्मी को देखते हुए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए सरगुजा की सामाजिक संस्थाओं ने सामूहिक रूप से वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया है। इसमें हम लोग फलदार वृक्ष भी और छायादार वृक्ष, दोनों वृक्ष लगाने के लिए सभी संस्थाएं अपने कार्य क्षेत्र में कई गांवों में लगाने के लिए हम लोगों ने आज से अभियान शुरुआत किया। आज सुभाष नगर में हम लोगों ने 21 पौधों का रोपण किया। पौधरोपण के दौरान संस्था के साथी और एक नई पहल हम लोगों ने किया कि बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति उनमें चेतना जागृत हो, तो इस अभियान में बच्चों को साथ में लेकर के उनसे भी हम लोगों ने पेड़ लगवाए और बच्चों को बाल वृक्ष मित्र से जोड़ने के लिए सारी संस्थाएं मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि बच्चे भी अभी से पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। इन सब मुद्दों को लेकर के सरगुजा की सभी संस्थाएं अभी इस साल हम लोगों ने 21,000 पौधा लगाने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस अभियान को समय समय पर सामूहिक रूप से लगाएंगे।
1: तो क्या ये सभी संस्थाओं का साझा प्रयास है और क्या इसमें सभी संस्थाएं समान रूप से भागीदार बनेंगी? क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा लक्ष्य आपने जो निर्धारित किया है उसे आप पूरा कर पाएंगे, या ये प्रयास कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है?
4: जो सरगुजा में बहुत सारी संस्थाएं, सरगुजा और बहुत बड़ा जिला है और यहाँ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं। सब लोगों ने मिलकर अपने कार्य क्षेत्र में और एक समन्वय के साथ इस

0: लक्ष्य को पूर्ति करने में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, और यहाँ करीब 100 संस्थाएं हैं और सभी संस्थाएं इस समूह से जुड़ी हुई हैं और इस लक्ष्य को आसानी से हम लोग हासिल कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा जिसमें वाचन स्वर था अंजनी कुमार पांडेय का। और अब आइए चलते हैं ज्ञान और मनोरंजन के विविध रंगों से सजी आज की विविधा की ओर।

विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि ये जो साल चल रहा है, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की स्थापना का 50वां वर्ष है, जिसे हम स्वर्ण जयंती वर्ष भी कह रहे हैं। तो विविधा में हम पिछले कुछ कड़ियों से

0: विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि ये जो साल चल रहा है, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की स्थापना का 50वां वर्ष है, जिसे हम स्वर्ण जयंती वर्ष भी कह रहे हैं। तो विविधा में हम पिछले कुछ कड़ियों से कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री। इस कार्यक्रम में हम उन व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आकाशवाणी अंबिकापुर से गहरे जुड़े रहे और आकाशवाणी अंबिकापुर को बहुत नज़दीक से महसूस किया, उसके कार्यक्रमों को सुना, गंभीरता से उसकी समीक्षा की और आकाशवाणी अंबिकापुर के प्रसारण का हिस्सा रहे। चाहे वो श्रोता हों या कार्यक्रम निर्माता हों या वार्ताकार हों, लोक गायक हों, इस कार्यक्रम में हम सभी साथियों को याद कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं श्री सुनील तिवारी जी। आकाशवाणी अंबिकापुर से इनका जुड़ाव लोक गायक के रूप में रहा है। वर्तमान में आप हिंदी के प्रवक्ता हैं। मुझे याद आता है कि आप अपनी युवावस्था में युववाणी में लोक गीत गाया करते थे और खास तौर पर भोजपुरी लोक गीत गाने में आपकी विशेष रुचि थी। स्वागत है सुनील जी आपका कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़ने की मेरी बहुत ही लालसा थी। वास्तव में पहले रेडियो स्टेशन और रेडियो में, रेडियो ही एक माध्यम हुआ करता था मनोरंजन का, और रेडियो में गाना या किसी को सुनना जो है बहुत ही एक उपलब्धि मानी जाती थी कि हमको अगर रेडियो स्टेशन में मौका मिल गया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है
0: जी।
1: तो ये जब मैं पढ़ता था तभी से मेरी इच्छा थी कि काश मैं भी रेडियो स्टेशन में जाता और गाता, क्योंकि गाने में रुचि मेरी शुरू से थी। और जब एक बार ऑडिशन के लिए मैं फॉर्म भरा तो ऑडिशन में मुझे बुलाया गया रेडियो स्टेशन में, अंबिकापुर रेडियो स्टेशन, और वहां पर मेरा सिलेक्शन सुगम संगीत हिंदी के लिए भी और भोजपुरी लोकगीत के लिए भी, दोनों में चयन हुआ मेरा। और मुझे फिर जो है रेडियो स्टेशन में बुलाया जाने लगा गायन के लिए। युवानी का कार्यक्रम था जिसका कार्यक्रम का नाम था आज के कलाकार
0: जी जी।
1: तो उस आज के कलाकार के कार्यक्रम में मुझे हमेशा मौका मिला, और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे सुगम संगीत हिंदी के लिए बुलाया जाता था, लेकिन जैसे ही वहां मैं पहुंचता और अपना मैं दिखाता उनको कॉन्ट्रैक्ट लेटर, तो उसमें देखते कि नहीं, आप हिंदी नहीं, आप भोजपुरी गाइए, क्योंकि हिंदी गाने वालों की संख्या है यहाँ पर पर्याप्त
0: जी,
1: और लोकगीत भोजपुरी गाने वालों की संख्या बिल्कुल नहीं है, तो आप भोजपुरी ही गाइए। तो उसमें बदल करके और मुझसे भोजपुरी गाना गवाया जाता था। इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और बहुत लंबे समय तक ये चला, लेकिन कुछ वर्षों के बाद कुछ ऐसे शायद रेडियो स्टेशन के नियम थे, मुझे पता चला कि एक उम्र के बाद जो है इस कार्यक्रम में हम भाग नहीं ले सकते
0: जी, युवाणी कार्यक्रम में
1: जी, युवाणी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। तो इसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट आना बंद हो गया। पुनः मैं जब संपर्क किया रेडियो स्टेशन से तो दूसरे कार्यक्रम में मुझे एक वक्ता के रूप में बुलाया जाने लगा। मैं अपना किसी कार्यक्रम, फुलवारी कार्यक्रम आया करता था जिसमें मुझे बुलाया जाने लगा, तो वहां मैं अपनी स्क्रिप्ट लेकर के जाता था और बोलता था। उसमें भी मुझे बहुत ही प्रशंसा सुनने को मिली और लोग प्रभावित होते थे, और जब कभी बाहर के लोग हमारी आवाज सुनते थे और पता चलता था कि ये चीज मैं ही बोला हूँ, तो बड़ी खुशी से मिलते थे और एक विशेष अनुभव मुझे भी होता था।
0: जरा उन दिनों के बारे में हमें बताएं जब आप आकाशवाणी अंबिकापुर में ऑडिशन के लिए आए थे, और कैसा माहौल था संगीत स्टूडियो का, किस तरह से आपका ऑडिशन हुआ और आप क्या गाए थे, अगर याद आ रहा हो तो जरा हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं।
1: एक्चुअल में हम जब ऑडिशन के लिए गए तो मेरे मन में बड़ा एक भय समाया हुआ था। गाता तो आत्मविश्वास था कि गाता ठीक ही हूँ
0: जी,
1: लेकिन परीक्षा की घड़ी जो है वो

0: सबके लिए बड़ा खतरनाक होता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहे है ना, ये तीन अक्षर का शब्द परीक्षा बड़ा भयानक होता है,
1: जी जी जी,
0: इससे बड़े बड़े लोग डर जाते हैं
1: जी।
0: तो परीक्षा की घड़ी थी और उस परीक्षा की घड़ी में मैं भी डरा हुआ था। ये लगता था कि इज्जत की बात है, लोग तो जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, और यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोगों से मैं क्या जवाब दूंगा कि आखिर क्यों नहीं हुआ, बहुत अच्छा गाते थे तो क्यों नहीं सिलेक्शन हो पाया। लेकिन ईश्वर ईश्वरीय कृपा थी कि मेरा दोनों में सुगम संगीत हिंदी में भी और लोकगीत भोजपुरी में भी सिलेक्शन हुआ, तो बड़ी खुशी मिली थी जब वो लेटर मुझे प्राप्त हुआ था। तो और वो समय मेरी उम्र लगभग उस समय 25, 26, 27 यही रही होगी
1: जी।
0: और उसमें सिलेक्शन हुआ था, और जब पहली बार मैं गाना गाया तो एक सुगम संगीत में गाया था, बलजीत सिंह कोहली का गाना जो था, कल से होगा ये घर मेरा होगा न घर, मैं पराई बनूंगी यही एक डर।
1: सर थोड़ा तरन्नुम में हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए।
0: इसका धुन जो मैं सीखा था वो ये था कि कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर, कल से मेरा ये घर होगा मेरा न घर,

0: ये हिंदी सुगम संगीत के लिए गाया था, और
1: वाह
0: एक
1: वाह वाह,
0: भोजपुरी में पहला गाना तो ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन एक मैं कजरी गाया था वो ध्यान में आ रहा है अभी। वो
1: जरा उसे भी थोड़ा गुनगुना दें सर।
0: कजरी का ये था बोल कि रिमझिम बरसेला बदरिया गोरिया गावेली कजरिया, रिमझिम बरसेला बदरिया।

0: देना।
1: वाह,
0: ये
1: क्या कहा जाए,
0: कजरी था।
1: आज भी आवाज में वही मधुरता है।
0: तुम
1: महोदय, जरा
0: भी
1: बताएं कि युवाणी कार्यक्रम के लिए जब आपने अपनी यात्रा समाप्त की, उसके बाद आप आकाशवाणी से वार्ताकार के रूप में जुड़े रहे, लेकिन मुझे याद आता है कि आप मंचों पर कई बार आकाशवाणी के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें सक्रिय थे। और मेरी स्मृति में है कि मैंने आपको पद्मश्री अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब के साथ मंच पर गाते हुए भी देखा था। जरा उस कार्यक्रम के बारे में बताएं।
0: ये हम लोगों का सौभाग्य था कि अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जैसे नामी गिरामी गायकों के साथ मंच पर शिरकत करने का मौका मिला, और उसके लिए रेडियो स्टेशन के म्यूजिक डायरेक्टर झा सर को मैं याद करना चाहूंगा।
1: जी, जवाहर झा
0: वो
1: सर।
0: जवाहर झा सर,
1: जी
0: जवाहर झा सर हम लोगों को उन लोगों के स्वागत के लिए एक स्वागत गान और सरस्वती वंदना की तैयारी करवाए थे,
1: जी
0: और बहुत ही मतलब एक सुलझे हुए म्यूजिक डायरेक्टर थे, और बहुत अच्छा हम लोगों के लिए मेहनत किया था। मुझे याद है कि जब मैं मुझे बुलाया गया था तो बाकी लोग 2-3 दिन उसकी रियाज कर चुके थे, और मुझ तक खबर पहुंचने में, चूंकि पहले वो फोन वाला जमाना तो था नहीं,
1: जी,
0: तो मुझ तक खबर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। तो जब मैं 2-3 दिनों के बाद पहुंचा और मुझे सरगम वगैरह सिखाए, और मुश्किल से 10 मिनट जो है सरगम सिखाए, बोले कि अभी बाकी लोगों को आप सुनिए, और इसके बाद फिर बाकी लोगों से एक एक करके उस सरगम को जांचने के लिए वो सुनने लगे कि तुम गाओ अलग अलग करके एक एक व्यक्ति से सुनने लगे। लास्ट में मेरी बारी रखे, और मेरी बारी जब आई और मैं सरगम अच्छे से गा लिया तो बड़ी तारीफ की कि तिवारी जी आप बड़ी जल्दी कैच कर लिए हैं, मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे परेशान करेंगे, लेकिन चलिए
1: जी,
0: आपका आपकी

0: समझ अच्छी है, आपने बहुत अच्छा कैच किया है सरगम को, इसका रियाज जारी रखिएगा।
1: जी
0: और हम लोग जो है उस मंच पर प्रस्तुति दिए थे अपनी, और अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जैसे लोगों के साथ शिरकत करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ
1: आकाशवाणी
0: ही
1: अंबिकापुर ने यह अवसर आपके जीवन में उपलब्ध कराया।
0: जी,
1: जी
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के चलते ही जो है हम लोगों को ये मौका मिल पाया।
1: तिवारी जी, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर आकाशवाणी अंबिकापुर का क्या प्रभाव है?
0: आकाशवाणी अंबिकापुर हमें एक विशेष पहचान देती है हमारे इस शहर के लिए। ये पुराने समय से, मैं कहूँ बहुत पहले से, आकाशवाणी अंबिकापुर अंबिकापुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और वहां पर हमें अगर मौका मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि उसमें हमें बोलने का, हमारा जो मन की जो भाव है उसे व्यक्त करने का और एक खुला मंच मिलना, ये सब चीजें जो है हमें, हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया है। और वहाँ के अन्य कलाकार भी, जैसे मैं जवाहर झा सर को याद किया, अताउल्लाह खां थे
1: जी, बांसुरी
0: जो
1: बजाते
0: बांसुरी
1: थे।
0: बजाते थे।
1: हाँ
0: इसके अलावा एक और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो भी जो है बहुत हम लोगों के साथ जो है मिलजुल करके, और युवाणी के कार्यक्रम में, आज के कलाकार कार्यक्रम में जब म्यूजिक देते थे तो बीच बीच में मजा भी लेते थे। तो ये सब चीजें हैं जो हमें
1: अदीप घोष जी आपके
0: बहुत
1: साथ सितार बजाए होंगे, आरिफ भाई
0: अच्छा।
1: थे जो क्लेरियोनेट बजाते थे आपके साथ।
0: जी हाँ जी हाँ, आप अच्छा याद दिलाती हूँ। इन्हीं का, आरिफ भाई का नाम अभी मैं भूल रहा था,
1: जी
0: अदीप घोष जी का नाम तो याद था।
1: जी
0: तो ये चीज जो है हम लोगों को यादगार पल है, ये सब हमारे जीवन के लिए ये सब यादगार पल है।
1: अच्छा तिवारी जी, एक दूसरी बात करें, थोड़ा विषय को बदलें।
0: जी
1: अब बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, मनोरंजन के ढेर सारे साधन हैं,
0: जी
1: और आकाशवाणी अंबिकापुर की 50 साल की यात्रा हो चुकी है। आज आप किस तरह से मूल्यांकन करेंगे और किस तरह की चुनौतियां रेडियो के सामने हैं, जरा संक्षेप में हमारे हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: देखिए, चुनौतियां हर जगह होती हैं और आज सोशल मीडिया का जमाना है बेशक, लेकिन सोशल मीडिया का भी एक दायरा है। लेकिन रेडियो जो है वो, जैसे दायरा कहने से मेरा मतलब ये है कि सोशल मीडिया का जहां तक नेटवर्क कैच कर रहा है वहीं तक इसको हम सुन सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेडियो में हम अगर बैटरी डाल दिए हैं तो पहाड़ पर भी अगर जा रहे हैं, जंगल में भी हैं, तो वहां भी हमें सुनने का मौका मिल जाता है, हम रेडियो को सुन सकते हैं। तो
1: जी
0: आज के समय में निश्चित तौर पे असर तो डाला ही है, लेकिन हम इसको सकारात्मक रूप में अगर देखें तो ये हम कह सकते हैं कि गांव के लोग अभी भी, गांव ही नहीं शहर के लोग भी, एफएम चैनल जो आ गया है अभी, तो शहर के लोग भी, गांव के लोग भी रेडियो से जुड़े हुए बहुत लोग मिलेंगे आपको, और इसकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, मैं तो ये कहूंगा, और उम्मीद है कि बरकरार रहेगी, चाहे लाख सोशल मीडिया हमारे समाज में व्याप्त हो जाए, इसके बाद भी रेडियो स्टेशन और रेडियो की लोकप्रियता बरकरार रहेगी।
1: उम्मीद करते हैं कि आपने जो शुभकामनाएं व्यक्त की हैं वो सच साबित हों और रेडियो की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। तिवारी जी,
0: ऐसी ही कामना करता हूँ।
1: आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये थे श्री सुनील तिवारी, व्याख्याता हिंदी, होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आप एक लोक गायक के रूप में आकाशवाणी अंबिकापुर से लंबे समय तक जुड़े रहे। स्वर्ण जयंती यात्रा के सहयात्री साथियों, आप यह कार्यक्रम अभी सुन रहे थे। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। नमस्कार।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा विविधा, जिसमें वाचन स्वर था अंजनी कुमार पांडेय का और प्रस्तुति थी प्रेमेंद्र कुमार की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

कार्यक्रम परिक्रमा अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार और वाचन व प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडे का। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब लीजिए पेश है बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

आषाढ़ का मास शुरू हो गया है, बरसात भी धीरे धीरे दस्तक दे रही है, मौसम में ठंडक आ गई है। कुछ ही दिनों में ये धरती हरियाली से सराबोर हो जाएगी। आज 22 जून है, जो विश्व के लिए बहुत खास है। बारिश से सिंची हुई धरती की शान होती है हमारे वर्षावन। आज के दिन विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। वर्षा वन न सिर्फ हमें भरपूर ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि मौसम और पर्यावरण को भी संतुलन में बनाए रखते हैं। दुनिया के करोड़ों जीव जंतु और अनगिनत पेड़ पौधे भी इन वनों से अपना गुजारा करते हैं। ये उनका घर है, बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही उपयोगी स्थल है वर्षावन। अनन्य प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, कीड़े मकोड़े सभी वर्षावनों में जीवित रहते हैं। यहाँ पे नदियां हैं, तालाब हैं, कीचड़ है, स्वाम्प है, जहाँ पे अलग अलग तरह के प्राणी एक साथ रहते हैं। भारत का सुंदरबन विश्व के प्रमुख वर्षावनों में से एक है। ये अपने आप में कमाल की बात है। भारतीय बंगाल टाइगर यहां पे रहते हैं, वर्षावनों में ही अपना घर बसाते हैं। वहाँ पे अनन्य प्रकार के जीव जंतुओं में से एक खास जीव फिशिंग कैट भी है। ये एक ऐसी तरह की बिल्ली है जो पानी में डूबकर डुबकी लगाकर मछली पकड़ती है। कहते हैं वर्षावन धरती के फेफड़े हैं, इन्हीं से हमारी धरती सांस लेती है। पर आज ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, साथ ही विलुप्त हो जा रहे हैं वहाँ रहने वाले बहुत सारे प्राणी। ज़रा सोचिए, अगर जंगल ना हो तो बारिश का वही क्रम होगा जो पहले नहीं देखा गया हो। जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, नदियों में पानी कम हो जाता है और हवा में ताजगी खत्म हो जाती है। वर्षावन धरती की धड़कन की तरह है, जो चुपचाप हमारे जीवन को आसान बनाती है। इसलिए चाहे एक पौधा लगाना हो, पानी बचाना हो या पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना हो, हर एक छोटा कदम प्रकृति के लिए बड़ा योगदान है। आइए तो शुरू करते हैं गुंजन का आज का ये कारवां कार्यक्रम के पहले गीत के साथ।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम था क्यों हो गया ना।

जब भी पेड़ों और पर्यावरण की बात होती है तो भारत के फॉरेस्ट मैन जादव पायेंग का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। असम के इस साधारण से इंसान ने अकेले अपने दम पर एक बंजर जमीन को घने जंगल में बदल दिया। उन्होंने देखा कि नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है जहां पर से पेड़ गायब हो गए हैं। पेड़ गायब हुए तो पशु पक्षी भी गायब हो गए और वो जमीन बंजर हो गई। 40 वर्षों तक लगातार वो वहां पर जाकर एक एक पेड़ पौधा लगाते रहते, वृक्षारोपण पौधारोपण करते करते यूं हुआ कि पंछी वहां आके रहने लगे और धीरे धीरे पंछियों के सहारे और बीज पड़े और इसी तरह से वो क्षेत्र पूरी तरह जंगल में परिवर्तित हो गया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, सालों तक वो पौधे लगाते रहे और इसी तरह जब वहाँ पे पशु पक्षी आके बसने लग गए तो अपने आप वो जगह जंगल बनती चली गई। उनकी कहानी हमें बताती है कि बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़ी ताकत नहीं बल्कि बड़ा इरादा होना चाहिए। एक व्यक्ति भी चाहे तो प्रकृति के लिए मिसाल बन सकता है।

अमिताभ बच्चन और साथियों के स्वरों में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था कहानी। इस गीत की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, संगीत दिया था विशाल शेखर ने।

इस बार मानसून का मिजाज कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। कहीं अच्छी बारिश हो रही है तो कहीं लोग बादलों का इंतज़ार कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष बारिश का पैटर्न थोड़ा सा अनिश्चित हो सकता है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में इसका असर किसानों और खेती किसानी पर देखने को भी मिल सकता है। ऐसे समय में मौसम की जानकारी पर नज़र रखना, पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करना और जल संरक्षण पर ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इस बदलते मौसम में आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इसे हमने चुना है फिल्म क्वीन से। इसे गाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: फिल्म क्वीन का ये गीत आप सुन रहे थे अमित त्रिवेदी की आवाज़ में। गीतकार थी अन्विता दत्त, संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। सुनते रहिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
7: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
6: अच्छा, वो कैसे?
7: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
6: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
7: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
6: अरे वाह, 07774 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय।

0: और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: फिर स्वागत है आपका बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। मैं हूं पॉलोमी। आज हमने चर्चा की विश्व वर्षावन दिवस पर। अब चूंकि पर्यावरण की बातें कर ही रहे हैं तो एक खास बात पर आइए नजर डालते हैं। अक्सर हम घूमने फिरने, पिकनिक मनाने या किसी पर्यटन स्थल पर जब जाते हैं तो अनजाने में अपने पीछे प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, डिस्पोजल प्लेटें, कचरा आदि छोड़ जाते हैं। हम तो चले जाते हैं पर बाद में आने वाले लोग वहाँ पर कचरे को देखकर सहम जाते हैं। वहाँ की सुंदरता खराब हो जाती है और पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए भी वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। अक्सर कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई दिखती हैं जिससे वहाँ के लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। इस आदत से अच्छा है क्यों ना हम अपने साथ एक प्लास्टिक की बड़ी थैली लेकर चलें जहाँ पर हम अपने सारे फेंकने की चीज़ों को उसमें रख पाएँ और इकट्ठा कर हम ऐसी जगह फेंकें जहाँ पर वाकई में डस्टबिन की सुविधा हो। खाने पीने की चीज़ें ले जाना क्या ज़रूरी है? सोचने वाली बात है कि हमें उतनी भूख भी नहीं लगती, हम बस बैठकर आनंद लेना चाहते हैं और अपने पीछे गंदगी छोड़कर आ जाते हैं। सभ्य देशों में ऐसी हरकतें नहीं होती, वहाँ के लोग अधिकतर अपने साथ अपना कचरा लेकर ही चलते हैं और जहाँ पर व्यवस्था होती है वहीं पर उसे फेंकते हैं। उन्हीं की तरह अगर हम भी अपनी आदत सुधारें तो हमारे भी पर्यटन स्थल साफ सुथरे और सुंदर प्रतीत होंगे। दोबारा जब हम उस जगह पर जाएंगे तो वैसी ही सफाई हमें फिर से दिखेगी। समस्त समाज में बदलाव ना सही, हम अपने अंदर तो बदलाव ला ही सकते हैं और अगर हर एक व्यक्ति अपने में बदलाव लाएगा तो समाज अपने आप बदल जाएगा।

अरमान मलिक की आवाज़ में आप ही गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हेट स्टोरी 3। गीत के बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया था बमन ने।

हम श्रद्धा के नाम पर नदी तालाबों में अक्सर पूजा सामग्री अर्पित कर देते हैं। यूँ तो कुछ लोग कहेंगे कि फूल, नारियल, दूध आदि प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनसे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। मगर ये सभी सामग्री पानी में जाकर ऑक्सीजन की मात्रा को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। इस कारण से जल में जम जाती है काई। ये ऑक्सीजन की मात्रा को अधिक हो जाने के कारण पूरे जल को शैवाल से भर देते हैं। थोड़े ही दिन में जल के भीतर रहने वाले सभी जीव, मछली आदि ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। देखते देखते वो तालाब या जलाशय काई से भरा हुआ दिखता है और महकने लगता है। फिर उसमें मच्छर पनपते हैं और बीमारियां फैलती हैं।

इसलिए कई बार देखा गया है कि मंदिरों के पीछे के तालाब अक्सर हरे और सहवाल से भरे हुए दिखाई पड़ते हैं। अपनी श्रद्धा के लिए विसर्जन करने वाली सामग्री को पानी में भिगाकर उन्हें या तो गाय या पशुओं को खिला देना चाहिए या फिर प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। श्रृंगार सामग्री, चुनरी आदि जैसी चीज़ों को जल में प्रवाहित करने के स्थान पर उन्हें ठंडा कर यानी कि भिगा कर रिसाइकिलिंग के लिए संबंधित स्थान पर छोड़ देना चाहिए। यदि आसपास ऐसी सुविधा या व्यवस्था ना हो तो इन सामग्रियों को नहीं खरीदना चाहिए। ईश्वर को हमारी भक्ति चाहिए। ये सब बेकार की सांसारिक वस्तुओं से भला कोई ईश्वर को खरीद सकता है? इसके स्थान पर अगर हम पर्यावरण को प्राथमिकता दें तो वहीं ईश्वर के प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी। आइए इसी बात पर आपको सुनाते हैं फिल्म ओ माय गॉड का ये गीत। इसे गाया है कैलाश खेर ने।

फिल्म ओ माय गॉड का ये गीत आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज़ में। साथी कलाकार थे मीत प्रोज, कुमार के बोल थे, संगीत दिया था मीत प्रोज ने। सुनते रहिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।

0: राम राम हो किशन भैया।
1: राम राम बिनु भैया।
0: ए दे भाई नगद ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला दे सुन सकते
1: है। हाँ, अबे तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

0: अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर पर बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। फिर से एक बार स्वागत है गुंजन कार्यक्रम के आज के अंक में। हम जीवन में कई बार इतना थक जाते हैं अपने उतार चढ़ावों को देखकर कि अपनी थकान मिटाने के लिए अलग अलग चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ फिल्मों की दुनिया में खो जाते हैं, कुछ संगीत से अपना दिन चलाते हैं, कुछ बागबानी से, तो कुछ भोजन पकाने खिलाने से संतोष कर लेते हैं। कला के माध्यम से लोग

अपना मन मस्तिष्क हल्का कर लेते हैं। इतने सारे मार्ग होते हुए भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नशे का सहारा लेते हैं। नशे का सेवन कुछ घंटों तक आपको दुनिया के दुखों से छुटकारा दिला सकता है, मगर नशा उतरते ही दुर्विचार दुर्भावनाएं फिर से हमें घेर लेती हैं और फिर धीरे धीरे कब नशे की लत लग जाती है हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति नशीले पदार्थों के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। सबका शरीर अलग है और सबकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी अलग हैं। किसी को नशे की चीज़ें कड़वी लगती हैं, किसी को मीठी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें कुछ विकृतियां होती हैं। मादक पदार्थों को लेकर वे अत्यधिक आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग दर्द की दवाइयों तक को अत्यधिक

किसी को नशे की चीज़ें कड़वी लगती हैं, किसी को मीठी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें कुछ विकृतियां होती हैं। मादक पदार्थों को लेकर वे अत्यधिक आकर्षक होते हैं। ऐसे लोग दर्द की दवाइयों तक को अत्यधिक रूप से सेवन में ले आते हैं। भले उन्हें कोई शारीरिक कष्ट ना हो, फिर भी वो दर्द की दवाइयां भी खाते रहते हैं। ये लोग अपनी शारीरिक विकृति के आगे मजबूर हैं, इसलिए बार बार नशे की आदत से वापस जुड़ जाते हैं। उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र ही एकमात्र सही स्थान है। नशीले पदार्थों का सेवन शरीर के लिए ही हानिकारक तो नहीं है, सिर्फ ये परिवारों को नष्ट करने और अपने अपनों को पीड़ा देने का एक प्रमुख कारण है। हॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार मैथ्यू पेरी ने अपनी किताब में अपने नशे की लत और उससे जुड़े संघर्षों के बारे में लिखते हुए जिक्र किया था, नशे की लत बहुत ही बेकार चीज़ है और हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली भी। इससे जीतना किसी एक अकेले के बस की बात नहीं, पर साथ मिलकर हम इससे ज़रूर जीत जाएंगे। आइए अब इसी बात पर आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये रूहानी नगमा।

कैलाश खेर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था सलाम इश्क। समीर के बोलते संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सकारात्मक रहना ही सबसे सही माध्यम है। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से हो, थोड़ा व्यायाम किया जाए, संतुलित भोजन किया जाए और अपने साथ कुछ समय बिताया जाए तो जीवन अपने आप बेहतर लगने लगता है। हर बात की शिकायत करने के बजाय जो हमारे पास है उसके लिए अगर हम शुक्रगुजार होने लगें तो दिन अपने आप अच्छा बीतेगा। खुशियाँ हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। बस उन्हें महसूस करने की नज़र होनी चाहिए। तो कार्यक्रम में विदा लेने से पहले आपको सुनाते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत जुबीन की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

0: तो आशा है गुंजन का ये क्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अब अपनी रेडियो साथी पॉलमी को दीजिए इजाजत।
1: रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री रायपुर से करेंगे शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ से सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रदेश के 1000 विशिष्टजन विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ आज सुबह करीब 11 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस यात्रा में कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय

0: संस्कृति आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ना है। प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी प्रदर्शन करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इस ट्रैकिंग रूट का शुभारंभ किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीब 61 लाख रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे दंतेवाड़ा की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कभी नक्सलियों का गढ़ रही करेगुट्टा पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर ये 5000 फीट ऊंची पहाड़ी कभी कुख्यात माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी। पिछले वर्ष अप्रैल मई माह में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया था। कई दिनों तक चले इस अभियान में भारी मात्रा में यहां से हथियार और 450 से ज्यादा IED बरामद किए गए थे। इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित सुरक्षा शिविर में कल योग सत्र आयोजित किया गया। राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल रमन डेका करेंगे। छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 27 जून तक चलेगी। इसमें देश के 21 राज्यों के 349 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 49 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नीट UG की पुनर्परीक्षा कल छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा एक पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के 127 केंद्रों पर करीब 46,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, GRP, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। रायपुर, बिलासपुर सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहे। रेलवे के अनुसार परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय वृहद शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने ISI से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी कार्य की आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री रायपुर से करेंगे शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं मौसम पर। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान रहा 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25.5 डिग्री सेल्सियस। और अब प्रस्तुत है फोन इन पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहायक हैं अक्षय रंजन वर्मा।
2: हेलो
3: हेलो
2: स्वागत है साथियों आप सभी का आपकी बात आपके गीत फोन इन कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका साथी अक्षय। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब

0: शरीर असंतुलित और ऊर्जावान रहता है तो मन भी सकारात्मक सोच से भर जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना, अपने शरीर और मन का ख्याल रखना सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि असली खुशी वही है जहां तन भी स्वस्थ हो और मन भी शांत हो। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने पहले फोन कॉल की ओर। हेलो जी, नमस्कार। आपकी बात, आपके गीत, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: मैं तीजन सिंह मरावी बोल रहा हूँ सर, लक्ष्मीपुर से।
0: तीजन सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर।
0: तो तीजन सिंह जी, क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: बस घर में ही, खेती किसानी का तैयारी में है सर, लेकिन बारिश अभी हुआ नहीं है तो उसी का तैयारी कर रहे हैं सर।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: जी सर, आपको भी और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को भी सर।
0: जी, तो योग दिवस के बारे में हमारे श्रोता साथियों को अगर आप कोई बात बताएं तो बहुत अच्छा होगा।
1: योग दिवस के उपलक्ष्य में सर मैं यही कहना चाहूंगा सर, हम सभी को मतलब योग करना चाहिए सर, क्योंकि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है सर।
0: जी बिल्कुल।
1: और कई तरह की मतलब योग नहीं करते हैं सर तो कई तरह के बीमारियां उत्पन्न होते रहते हैं सर, तो हम सभी को मतलब योग करना चाहिए सर।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात आपने हमारे श्रोता साथियों को बताई। आपकी बात से हमारे श्रोता साथी ज़रूर प्रेरणा लेंगे तीजन सिंह जी। और आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: सड़क फिल्म का गीत सुना दीजिएगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिश समस्तीपुर।
0: कैसे हैं आप हारून जी?
1: हम बहुत अच्छे हैं
0: जी। तो क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं जी।
1: और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर मौसम बिल्कुल ठीक है, अभी गर्मी और बारिश दोनों का ही मौसम बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है
1: जी। हमारे इधर तो बारिश नहीं हो रही है, बादल छाए हैं, खुशनुमा मौसम है, हवाएं भी चल रही हैं जी। को योग दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं
0: जी। आपको भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं अरुण जी। जी, तो आपके इधर गर्मी बनी हुई है, खेती में अभी क्या कर रहे हैं?
1: अभी तो मौसम है अच्छा, खुशनुमा है, गर्मी पड़ रही है और बादल भी छाए हैं और हवाएं भी चल रही हैं। अभी तो खेती में कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बारिश होगी जब ही भोनी होगी।
0: अच्छा जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई आपके क्षेत्र में जल्द से जल्द बारिश हो और
1: जी जी
0: आपके सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज फोन करने के लिए। गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज आप?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में दिल चीर के का ऐसे कुछ गाना के बोल रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो, कार्यक्रम आपके बात आपके गीत।
0: जी कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम पंचायत झेराडी टोला हिंसा डांड से निर्दया गिरी बोल रहा था।
0: तो कैसे हैं आप?
1: कुशल मंगल है, कहिएगा। हल्की बारिश होती है और हल्की धूप हो रहा है।
0: जी जी
1: है, और हल्की धूप और हल्की बारिश का मजा लेते हुए और आप लोगों के आशीर्वाद से बढ़िया है। और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद मेरा फोन लगा है।
0: जी बिल्कुल, हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि देखिए आपका फोन लगा है और आपकी हमसे बात हो रही है।
1: अक्षय रंजन वर्मा जी है, कौन है?
0: जी जी, मैं अक्षय बात कर रहा हूँ।
1: जी जी, मैं वो निर्दया गिरी नेत्रहीन हूँ जो महामाया मंदिर में अपना भजन कीर्तन से जीवन व्यापन कर

0: सकता हूँ।
1: जी बिल्कुल, हमें जानकारी है, आप हमारे पुराने और नियमित श्रोता हैं, हमसे जुड़े रहते हैं।
0: जी जी, और आप इतना सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं अभी, ईस्टर समंस और ईमेल की गूंज
1: जी
0: और मन भावन
1: जी,
0: तो किसी अभाव के कारण मैं पत्र नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन मेरा नाम आने पर रेडियो में तरसता हूँ मैं, कभी कब मेरा नाम आ जाए।
1: जी तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, और देखिए कार्यक्रमों में जुड़ जाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और
0: हाँ।
1: देखिए आज आप हमसे जुड़ पाए कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और आपके जैसे श्रोता आकाशवाणी अंबिकापुर की शान है। तो कृपया हमसे जुड़े रहिए, और हम तो चाहेंगे कि कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में और फ़ोन इन कार्यक्रमों में आप हमेशा हमसे ही जुड़े रहें।
0: मेरा ये सलाह है, कहिएगा
1: जी जी,
0: ये मतलब जैविक खेती अपनाए कहिएगा
1: जी,
0: और गुणवत्ता युक्त खाद ही डालें, और अपने मिट्टी परीक्षण अपने खेतों के जरूर करवाएं
1: जी,
0: और इन साल मानसून की बारिश थोड़ा कमी हो तो थोड़ा हरवन धान जल्दी पकने वाला को वो बुने
1: जी,
0: और मेरा अंत में गीत पसंद है, नसीब अपना अपना फिल्म से गीत है
1: जी,
0: जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और आशा भोसले ने
1: जी,
0: गाने का बोल है जिंदगी की झूमती गा बहारों में सनम, मैं रहूं तुम रहो दूसरा कोई न हो। और कॉल शामिल करने के लिए अक्षय रंजन वर्मा जी, आपको कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद।
1: आपका भी फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो जी, नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर जी,
0: जी नमस्कार।
1: नाम घर से माखन वर्मा बोल रहा हूँ सर।
0: माखन वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: सर ठीक है सर, क्या है कि खेती बाड़ी की अब तैयारी में लगे हैं।
0: जी
1: बरखा रानी का इंतजार है धान बोनी करने के लिए।
0: जी तो बारिश के इंतजार में हैं। अभी मौसम कैसा बना हुआ है आपके क्षेत्र में?
1: अभी तो मौसम सर उमस है, बहुत
0: अच्छा,
1: हल्का हल्का धूप खिला हुआ है और उमस बहुत है सर।
0: तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आपके क्षेत्र में भाई जल्द से जल्द बारिश आए, ताकि आपके जो खेती का कार्य है, जो कृषि का कार्य है, वो शुरू हो सके।
1: जी सर।
0: जी तो आज देखिए योग दिवस है, तो योग दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जितने हमारे आकाशवाणी के श्रोता भाई बहन हैं और जितने भी कंपनियां हैं, उन लोगों को भी योग दिवस की पूरा आकाशवाणी परवाल बहुत बहुत बधाई सर।
0: जी तो इस दिवस के अवसर पर यदि आप कुछ बताना चाहें हमारे श्रोता साथियों को तो जरूर बताएं।
1: क्या है कि सर कि योग हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है सर।
0: जी जी
1: सभी को योग करना चाहिए।
0: जी
1: अनुलोम योग है और कपाल योग है,
0: जी जी
1: करना चाहिए सर।
0: स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का भी वास होता है, तो हमें योग
1: जी
0: तो
1: सर।
0: करता ही चाहिए, बहुत जरूरी है। आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप माखन वर्मा जी?
1: आज देख के सुनवा दीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं
1: सर, मैं लखनपुर गोता से बोल रहा हूँ सर,
0: जी? कौन बोल रहे हैं?
1: दिनेश कुमार सिंह। ठीक
0: दिनेश कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: है सर, अपना बताइए। सर
0: हम भी ठीक हैं। तो दिनेश जी, क्या करते हैं आप?
1: मेरा बिल्डिंग का दुकान है सर, ग्राम पंचायत गोता में। तो बस हमारा बिल्डिंग का कार्य एक तरफ चलता रहता है सर, और दूसरी तरफ आपका रेडियो चलता रहता है सर।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप देखिए आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं और आकाशवाणी

0: अंबिकापुर के कार्यक्रमों को सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, और अपने काम में भी रहते हैं जी। तो मौसम कैसा है अभी इस समय आपके क्षेत्र में?
1: तो सर मौसम तो अभी सुहाना मौसम है सर, और अभी धूप वूप ज्यादा नहीं करता है, बस बादल छाए रहता है सर।
0: अच्छा, बादल छाए हुए हैं, और बारिश की क्या संभावनाएं हैं?
1: जी थोड़ा बहुत बारिश की संभावना बनी हुई है।
0: अच्छा, बारिश की संभावना बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है बारिश आपके क्षेत्र में आए, और इस गर्मी से जो है वो राहत आप लोगों को और अच्छी तरह से मिले। इसी बीच आज देखिए योग दिवस है, तो सबसे पहले आपको योग दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आपको भी सर, और आकाशवाणी के जितना भी श्रोता भाई लोग हैं, और आकाशवाणी से जुड़े हुए जितने भी हमारे अधिकारीगण जो हैं, उन लोगों को भी योग दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं सर।
0: जी, तो देखिए योग दिवस है आज, तो इसके बारे में अगर आप हमारे श्रोता साथियों को कुछ बताना चाहें तो जरूर बताएं।
1: तो क्या है सर, योग दिवस है, जो है जो हमारे लिए मान के चलिए कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है सर। हमको निरंतर सुबह 5 बजे योग करना चाहिए सर, ताकि हमारा सेहत बरकरार रहे और सही सलामत हम अपना अपना स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दे सकें सर।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने श्रोता साथियों को बताई, आपकी बात से निश्चित रूप से श्रोता साथी प्रेरणा लेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और एक और संदेश देना चाहता हूँ सर।
0: जी जी
1: जी, मैं हमेशा सर ये श्रोता भाई लोगों को संदेश देता हूँ कि सर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ काम कीजिए, ताकि आगे चल के आपका भविष्य उज्ज्वल रहे, और किसी एक काम को पकड़िए जो आपके जीवन को जीवन पे आधारित हो और पूरा जीवन उसी में कट जाए सर।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें अपने जीवन में भाई एकाग्र तो रहना ही चाहिए। कोई भी काम अगर हम तय करें, कोई भी काम अगर हमें करना हो, तो हमें निश्चित रूप से उसे बेहद मन से करना चाहिए और जुड़कर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात
1: जी सर। और क्या है सर कि आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान को बस ये लेके चलना चाहिए कि हम किसी के यहाँ काम करने ना जाएं, यानी कि हम किसी के यहाँ नौकरी ना करें, अपने आप में इतना प्रतिभा बना लो ताकि आप दूसरे को नौकरी दे सके।
0: जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात,
1: ये ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से सर, मेरा यही सोच है सर, हमेशा यही सोचता हूँ।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और आपने बहुत अच्छे विचार श्रोता साथियों को बताए। आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप दिनेश जी?
1: सर फिल्म के नाम तो पता नहीं है, लेकिन एक किशोर दा के आवाज में है सर, छू कर मेरे मन को, या तूने क्या इशारा बदला, ये ऐसे करके है सर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो जी, नमस्कार। आपकी बात, आपके गीत, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर जी,
0: जी नमस्कार
1: पीछे अशोक सिंह बात कर रहा।
0: अशोक जी, नमस्कार। कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आकाशवाणी की अंबिकापुर के सदस्य।
0: अंबिकापुर आकाशवाणी भी बिल्कुल ठीक है, हम भी बिल्कुल
1: और
0: ठीक
1: सर
0: हैं,
1: क्या हो रहा है?
0: हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और बिल्कुल योग दिवस मनाया जा रहा है, आप बताइए। सबसे पहले आपको योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। योगा दिवस मनाया है
0: जी,
1: जी।
0: तो योग दिवस आपने मनाया है, तो श्रोता साथियों को इस दिवस के बारे में अगर आप कुछ बता दें तो बहुत अच्छा।
1: योग दिवस सर रोज अपना योगा करते हैं तो अच्छा करना चाहिए, जिससे निरोग काया रहती है और स्वस्थ रहते हैं
0: जी
1: जी सर। सुबह जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिर अपना अलोम विलोम प्राणायाम वगैरह करते हैं, रोज दिनचर्या में शामिल है
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी
1: जी।
0: बात है। और हम यही चाहेंगे कि आप देखिए इसी तरह से योग करते रहें और स्वस्थ रहें। श्रोता साथियों को भी
1: गीत
0: आपने बहुत अच्छी बात बताई। अशोक जी, आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: सुना दीजिए। कभी कभी का सर, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो जी, नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं चिरमिरी कालदी से इंद्रभान से बोल रहा हूँ। ठीक
0: इंद्रभान जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: है सर, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। कार्यक्रम में फोन किया हूँ। परसों पानी गिरा सर, कल मौसम बनाया, बादल किया, और इसके बाद फिर आज जबरदस्त धूप किया सर। उलट मौसम हो रहा है।
0: जी
1: ये सब अगर जंगल की लकड़ी, पेड़ पौधे की कटाई के चलते पर्यावरण प्रदूषण होता है, वर्षा ढंग से नहीं होता है सर। और ये क्या है कि हम जैसे इंसानों की गलती के चलते जिस समय वर्षा होना चाहिए तो वर्षा नहीं होता है। ठंडी में पानी गिर रहा है, गर्मी में पानी गिरता है, बरसात में पानी नहीं गिर रहा है। तो इस टाइप का मौसम हो रहा है सर। तो लोगों से आग्रह किया जाएगा कि पर्यावरण के दिन में तो पेड़ पौधे लगाते हैं, तो बाकी दिन भी पेड़ पौधे लगाएं और उनको सुरक्षित करें। और उसके बाद अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं, आम के पेड़, गुच्छे के लगाएं, तो घेराव भी करें, सुरक्षित का ध्यान रखें। पेड़ पौधे जो काट रहे हैं उनको मना करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करें, क्योंकि उससे बिजली पैदा होता है सर, खेती होता है, घर का पानी में भी पानी, सार्वजनिक कार्य, घर का घरेलू कार्य में भी होता, पशु पक्षी भी पानी पीते, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात बताई श्रोता साथियों को कि देखिए वृक्षारोपण करें और साथ ही साथ उसका ध्यान भी रखें। तो हमारे श्रोता साथियों ने इससे ज़रूर संदेश लिया होगा। इसी बीच आपको योग दिवस है आज, तो योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: जी सर, योग दिवस के लिए ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं सर। योग दिवस के बारे में बोलूंगा सर, सुबह जल्दी उठे, व्यायाम करें, और इसके बाद एक ही दिन में रोज करें सर, और खूब पैदल चलें, और खान पान में भी ध्यान रखें, नियमित टाइम पे सोए उठे, और उसके बाद हर शाम को दिनचर्या का एक नियमित टाइम बनाए। और योग करने से शरीर स्वस्थ रहता, मन भी प्रसन्न रहता, कोई बीमारी परेशानी नहीं होता।
0: जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें आपने श्रोता साथियों को बताई। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर।
1: कौन सा मिल किया सर?

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी,
1: हेलो
0: नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी अच्छे रंजन सर जी नमस्कार जी, मैं सुपर स्टार रेडियो स्टेशन सारा साल सुनकर जिला पूरे छत्तीसगढ़ से प्रेम सराजवाड़े बोल रहा हूँ।
0: प्रेम साई जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं सर
0: जी। तो आज
1: जी,
0: तो
1: आप सभी को और समस्त रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस और फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई।
0: जी आपको भी इन दोनों दिवसों की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हर साल 21 दिन को योग दिवस मनाया जाता है ना,
0: जी
1: तो मैं यही कहूँगा कि भाई हमें हमेशा प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ योग करना ही चाहिए
0: जी,
1: ताकि जो शरीर का जो संतुलन है वो बना रहे और जिससे कि किसी प्रकार की बीमारी न पड़े, है ना?
0: जी
1: जी
0: जी बहुत ज़रूरी है। और देखिए, आपने बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता साथियों को आज के इस योग दिवस के अवसर पर बताई, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बातें जानकर। तो आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप प्रेम साई जी?
1: जी आंदोलन और गाने का बोल है आएगी हर पल तुझे मेरी याद वाला बजा दीजिएगा, है ना?

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत बस यहीं तक। हम आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं प्रत्येक रविवार सुबह 10:30 से। आप हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 231-917 और 231-918। इन नंबरों से पहले अंबिकापुर का SED कोड 07774 जरूर लगाएं और जुड़े हमसे प्रत्येक रविवार सुबह 10:30 से कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना और कि कृपया हमसे इस कार्यक्रम में 2 सप्ताह के अंतराल के बाद ही जुड़ें। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अपने साथी अक्षय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो आपकी बात आपके गीत। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहयोग था अक्षय रंजन वर्मा का। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में राष्ट्रीय समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की

0: महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिस्तेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, गीत लिखा है नीरज ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। इंदिरा तौक तखतपुर से मिशीलाल विश्वकर्मा, श्रीमती मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी। संगीत

सीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। बिरसिंहपुर, पाली जिला, उमरिया, एमपी से संतोष कुमार राव, कुमारी भारती राव, बेलाबाई, विकास, राजकुमार सिंह, तेजवती सिंह, रुद्र, अदिति और ओम प्रकाश सिंह। शहीद टेकराम चौक, हथमंद करेली से रामाधार ध्रुव, भुवेश कुमार ध्रुव। छत्तीसगढ़ भदरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। सरोज चौक, अमरावती, महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया शोएब खान, पुत्रा मुस्तफा खान, राउ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग, अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यह प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत हमने लिया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में समीर का लिखा हुआ फिल्म बीवी हो तो ऐसी से। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। मुकाम फुलसर व्याहा कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नयन दास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, सौर्य, कुमारी सानवी और परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, तामिनी वर्मा। आज़ादनगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल समीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम रजा। चांदनी चौक गंडई पंडिरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू और रविंद्र सेन। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू, प्रतीक कुमार और मानस साहू। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अबे तो शुरू है कि सहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें की है। इस्लामपुरा जलगांव जामोद जिला बुलढाणा से सहदीप दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना और समीत कुमार दामोदर ने

एटा रोड गंज डुंडवारा यूपी से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या, ऐश्वर्या, श्रेया, माफ कीजिएगा, श्रेया गौतम, कुश, रिंकू, टिंकू और रीना। धौरपुर रोड से नेहा कंवर, अनिल कुमार नागेश, शंभु नागेश, सोनसाय, नंद कुमार, राजेश्वर, कोमल और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम धुराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य। नरहन स्टेट से भाई फटपटिया झा, फुलेश्वरी देवी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, पेपी आराध्या और ललन मिश्रा। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से बीके मिश्रा, पिने सुरगनैया और लल्लू पंडित। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और शब्द रचना है अनजान की। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अब पेश है आशिकी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की, संगीतकार है नदीम श्रवण, गीतकार है रानी मलिक और इस गीत के फरमाइश करता है ग्राम परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी तुषारनी खुमेंद्र मसीहा, अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा अनस और रेहान, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, जरूर वरुण विदर्भ से बाबा साहेब वाड़ुदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनेरे आदि और युवराज, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मिका, बलविंदर बीरक, जयदेव बीरक और मिका बीरक, तीव्रता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र कुमार मरकाम और इसी जगह से हैं गजेंद्र प्रताप मरकाम, सुरेंद्र कुमार, मोहन सिंह और मनमोहन सिंह मरकाम, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा, कालका से सुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आशिकी फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में देव कोहली का लिखा ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र। इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी ने। कनेरा मोहल्ला पटियाले से मुकेश पत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंशपत्ता और बत्ता परिवार के सभी सदस्य। डाइवर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिकलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिकलानी। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, ज्योति, आकृति और जय राहुल। इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद शादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर, सरिता गम्हाड़कर, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गम्हाड़कर। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गम्हाड़कर, वैशाली गम्हाड़कर, कुमारी ध्वनि गम्हाड़कर। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद और माखीजा परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत आप सभी की पसंद पर। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मुन्ना प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान,

प्रिया मौजी उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, चार मिनट चौक गंडई पंडरिया से दरियान अमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और शायना शर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता और लोकेश जोशी इसी जगह से हैं, हरमिंदर चावला, धनेश तिवारी और शिव शर्मा, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंतली और आरती जोंतली। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना चौधरी ने, माफ़ कीजिएगा, सपना अवस्थी ने। संगीतकार हैं नदीम श्रवण और गीतकार हैं समीर।

कार्यक्रम के अंत में पेश है खिलाड़ी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। संगीत निर्देशन है जतिन ललित की और शब्द रचना है अनवर सागर की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार, रजनी देवी और मास्टर प्रणय कुमार साहू। छत्तीसगढ़ भाटापारा ददरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और छाविंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन एमपी से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही ईशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, सबाना आरम और चांदनी नाज। ग्राम पिलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील, साहिल, अंश और कुमारी सुजाता पोहरकार। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम, हरिशंकर, प्रशांत और रत्नेश प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: खिलाड़ी फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ से सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रदेश के 1000 विशिष्ट जन विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ आज सुबह करीब 11 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस यात्रा में कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव जोड़ना है। प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कभी नक्सलियों का गढ़ रही करेगुट्टा पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर ये 5000 फीट ऊंची पहाड़ी कभी कुख्यात माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी। पिछले वर्ष अप्रैल मई माह में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया।

0: गया था। कई दिनों तक चले अभियान में यहां से भारी मात्रा में हथियार और 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए गए थे। इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित सुरक्षा शिविर में योग सत्र आयोजित किया गया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का अवलोकन और वाचन किया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और ग्रामीणों से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी कार्य के आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है। मामले की आगे की जांच रायपुर एटीएस को सौंपी जाएगी। राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल रमन डे का करेंगे। छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 27 जून तक चलेगी। इसमें देश के 21 राज्यों के 349 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 49 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय वृहत शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का।

अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओ ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी

स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओ, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए,

0: ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
1: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चयन।

शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन के आज के अंक में मैं आपके साथ हूं, आपकी रेडियो साथी धरती। आज हम निकले हैं एक ऐसे सफर पर जहां संगीत हमारा हमसफर होगा और गीत हमारी मंजिलों की दास्तान सुनाएंगी। श्रोताओं, सफर केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार है। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक हम सभी किसी न किसी सफर के मुसाफिर हैं। कभी ये सफर सपनों की ओर ले जाता है तो कभी यादों की गलियों में भटका देता है, तो कभी हमें अपने ही भीतर छिपे व्यक्ति से मिलवा देता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे सदाबहार और लोकप्रिय गीत जिनमें सफर की भावना कभी सीधे शब्दों से तो कभी एहसासों के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस पहले गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म अंदाज से। आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और शब्द रचना है हसरत जयपुरी की।

0: अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर

0: किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, रास्ते बदलते रहते हैं, मंजिलें बदलती रहती हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जीवन का हर नया मोड़ एक नए सफर की शुरुआत होता है। कुछ लोग मंजिल की तलाश में निकलते हैं और कुछ लोग सफर को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं मधुमति फिल्म का ये गीत। आवाज़ है मुकेश की, संगीतकार है शलील चौधरी और गीतकार है शैलेंद्र।

श्रोताओं, जीवन के हर किसी को कभी न कभी ऐसा लगता है कि वह एक मुसाफिर है जो बस चलता जा रहा है नई राहों और नई अनुभवों की तलाश में।

जब सफ़र के साथ प्रकृति की सुंदरता जुड़ जाए तो रास्ते और भी हसीन हो जाते हैं। पहाड़, वादियों, ठंडी हवाएं और मन में उमड़ती खुशियां, इन सभी का अद्भुत चित्रण करता है हमारा ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया से। आवाज़ है केके की, संगीत निर्देशन है प्रीतम का और शब्द रचना है समीर की।

निकल पड़े हों, जहां हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुरा रही हो। श्रोताओं, जीवन का सफर हमेशा आसान नहीं होता, कभी संघर्ष मिलता है तो कभी चुनौतियाँ, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहने का साहस रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुँच पाता है। इसी के साथ पेश है ये अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ, फिल्म आपकी कसम से। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

सच है, राहें कितनी भी कठिन क्यों ना हों, कदम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि हर नया कदम हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। कार्यक्रम में अब बारी है आज के अंतिम गीत की। यह गीत केवल रास्तों की नहीं बल्कि स्वयं को खोजने की यात्रा की कहानी कहता है। कभी कभी सबसे लंबा सफ़र बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर तक पहुंचने का होता है। इसी के साथ पेश है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म तमाशा से, जिसे गाया है लकी अली ने, संगीत दिया है AR रहमान ने और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

श्रोताओं, जीवन में मंजिलें बदलती रहती हैं, लेकिन सफ़र कभी समाप्त नहीं होता। हर रास्ता हमें कुछ सिखाता है, हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है, और हर अनुभव हमें पहले से अधिक समृद्ध बनाता है। इसलिए जीवन के हर पल, हर राह और हर सफ़र को खुले दिल से स्वीकार कीजिए। इसी गीत के साथ हमारा आज का ये संगीतमय सफ़र बस यहीं तक।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, चेकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे।

0: झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सामयिक सुझाव का विषय है अन्न भंडारण की विधि।
2: बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति, कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। यह प्रगति राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सुधार लाती है, परंतु यह चिंता का विषय है कि तकनीकी ज्ञान के अभाव में एवं त्रुटिपूर्ण अन्न भंडारण के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है। भंडारण की उचित व्यवस्था एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जो लोगों के मुंह तक नहीं पहुंच पाता। यदि किसान के स्तर पर भंडारण के दौरान होने वाली हानि के कुछ भाग को रोका जा सके तो निश्चित रूप से खाद्यान्न की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। 15% नमी युक्त अन्न को 3 माह तक इसी अवस्था में संचय करके रखने पर लगभग 30% पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है एवं अनेक जीव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण खाद्यान्न में क्षय होने लगता है। अतः अन्न संसाधन एवं भंडारण व्यवस्था का पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। गेहूं, धान, अरहर, मसूर, उड़द व मूंग वगैरह रोजाना खाने से जुड़े ऐसे अनाज हैं जिन्हें उपजाकर किसान खुद भंडारित करते हैं या फिर वे कारोबारियों या सरकार द्वारा गोदामों में स्टोर किए जाते हैं ताकि लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके। अनाजों का सही भंडारण बहुत जरूरी है, क्योंकि भंडारण के दौरान बहुत से कीट जैसे घून, सूढ़ी, पतंगा, दूसरे जीव जैसे फफूंदी व चूहे वगैरह अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अनाज गोदाम में रखने से पहले गोदाम, कोठार वगैरह की भली भांति सफाई करनी चाहिए। ऐसा करने से भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर कीटों का हमला कम होता है। अगर गोदाम के अंदर व आसपास चूहों के बिल हों तो उसे हटा देना चाहिए। नए अनाज का पुराने अनाज के साथ मिलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। हर साल अनाज को रखने से पूर्व गोदाम को चूने से पोताई अवश्य करनी चाहिए। इससे कीट व बीमारियों का प्रकोप कम होता है। अनाज को रखने से पूर्व गोदाम को किसी धूमक या धुआं छोड़ने वाली मशीन से उपचारित करना चाहिए। अनाज को गोदाम में रखने के लिए दानों को 8-10% की नमी में रखा जाए तो कीटों का प्रकोप कम होता है। साथ ही अनाज के सड़ने व उसमें फफूंदी लगने की संभावना कम हो जाती है। जमीन के नमी को अनाज में आने से रोकने के लिए बोरियों को लकड़ी के तख्तों पर विधासी पॉलीथीन की चादर के ऊपर रखना चाहिए। यह इंतजाम दीवार से कम 50 सेंटीमीटर व फर्श से भी 50 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अनाज से भरी जूट की बोरियों की सतह पर कीट रसायन का छिड़काव करने से भी अनाज को कीटों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। इसीलिए DDVV नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए अथवा मेलाथियान नामक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। भंडार की दावतों को कोलतार

0: से लगभग 1.5 मीटर ऊंचाई तक अच्छे से पेंट करना चाहिए, जिससे दरारों में मौजूद कीट व अंडे बाहर न निकल पाए। अगर गोदाम में पहले से कीट के होने का अंदेशा हो तो छतों व दीवारों पर 0.5% मेलाथियन के घोल का 3 लीटर प्रति 100 वर्ग लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यदि गोदाम का फर्श सीमेंट का है तो 5% कार्बोलिक एसिड से धोकर सुखा लें। EDCT 1 मिलीलीटर प्रति घन मीटर स्थान की दर 24 घंटे तक धुआं करना चाहिए। अगर बोरों को इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो इनको भी कीटनाशी से उपचारित करके ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। जैसे जहां तक संभव हो तो भंडारण के लिए नए बोरों को ही प्रयोग में लाना चाहिए। अनाज को कड़ी धूप में सुखाकर थोड़ी देर छायादार जगह में रखकर ही गोदाम में रखना चाहिए। समय समय पर भंडारित अनाज को देखते रहना चाहिए। एल्युमिनियम फास्फाइड जो पाउच के रूप में बाजार में मिलती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा 1 क्विंटल अनाज के लिए पर्याप्त होती है, जिससे घुन से सुरक्षा होती है। खाद्यान्न को रखने के बाद गोदाम को अच्छी तरह से सील कर बंद कर देना चाहिए। वर्षा काल में गोदाम को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। कुछ पुराने तरीकों को भी अपनाकर भंडारण में नुकसान से बचा जा सकता है, जैसे 0.5 किलो प्याज प्रति बोरी रखने से घुन व चींटी का प्रकोप नहीं होता। जंगली तुलसी, गुल सितारा, नीम आदि की पत्तियों को रखने से भी अनाज में कीट नहीं लगते। अनाज को वैज्ञानिक विधि से भी भंडारित किया जा सकता है। धातु की कोठी या कोठियों के अनेक प्रकार हैं। आवश्यकता अनुसार कोठियों का चयन किया जा सकता है। ये बनावट में मजबूत होती है, इनकी छत ढलवा होती है, इनके ऊपर अनाज भरने के लिए एक द्वार होता है। इस प्रकार की कोठियों में 3 से 10 क्विंटल तक अनाज रखा जा सकता है। इन कोठियों के मुख्य द्वार तथा तल द्वार दोनों में ताला लगाया जा सकता है। सीमेंट की पक्की कोठी का भी इस्तेमाल भंडारण के लिए किया सकता है। यह कोठी ईंट, सीमेंट व कंक्रीट के साथ मिलाकर बनाई जाती है, जिससे आमतौर पर 2 टन अनाज आता है। इन कोठियों को 2 या 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिससे अलग अलग किस्म के अनाज रखने की व्यवस्था रहती है। सीलन से बचाए हुए इसके सभी दीवारों पर सीमेंट करने से पहले पॉलिथीन बिछा देना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सामयिक सुझाव का विषय था अन्न भंडारण की विधि। मीडियम वेव और FM बैंड पर ही आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम घर गोसाइन में स्वागत है। संगी हो, मैं हो सुमतिया बहन, आकाशवाणी अंबिकापुर से आप मन सुनता है कार्यक्रम घर गोसाइन। जमो संगी संगवारी मन कर ढेरे ढेरे स्वागत है। संगे देखी हमन जानत ही कि आएगे बरखा, गिरगे पानी, भीगे छपरी, भीगे छानी। संगी हो हमन देखत ही कि बरखा के शुरुआत हो गई है और ये बदलत मौसम में दे जहाँ हमार स्वास्थ्य पे असर डालते, संगे संगे ये समय है हमार खेती पाती के, ये समय है हमार लैका मन के स्कूल के, और देखी पढ़ैया लैका मन के हमन देखत ही बड़ा उत्साह और उमंग के साथ साल के शुरुआत लग करी न है। बस एक ठन गोट कहूँ कि बिना भेदभाव के हमर नोनी रहे चाहे बाबू रहे, दोनों झल्ला हमन साला भेजना है और पढ़ाना लिखाना है, उमन कर जिंदगी ला बढ़िया ले गढ़ना हवे। जैसे कहें बरखा कर शुरुआत हो गई से, कहों कहों जग तो देखी नांगर मन जोताई चलत है जोर शोर से, खेती बाड़ी के काम चलत है, सोचत है हमन जिन पिछुआ जाई ओकर खेत है जोताई गई से, हमर अजय ले नहीं जोताई से, इधर भारी टेंशन रहते हमार गाँव घर में। तो भाई कोई ट्रैक्टर से जोतत है, कोई नांगर से जोतत है, लेकिन बड़ा जोर शोर से देखी हमार खेती पाती के दिन का शुरुआत हो गई से है। संगे यही समय पर देखी हमार जो भैया बहनी मन है गांव घर के कही चाहे जो भी खेती बाती करते हैं, उमन साल भर दो पैसा जोड़ के रखते हैं कि हमें देखी हमला बीज खरीदना है, अच्छा देखी गुणवत्ता के बीज खरीदना है हमला, देखी कौन सा धान ला कहाँ जग बुनना है, कौन सा हमर साग भाजी ला कहाँ जग हमला लगाना हवे, ओकर बीज कर भाई नस्ल बढ़िया है कि नहीं हवे, ओकर माटी और बढ़िया है कि नहीं, हमला मृदा कर भी देखी थोड़ा सा तिहा करना पड़ते, माटी कर भी तिहा करना पड़ते, खाद भी ओकर भी तिहा करना पड़ते। यही समय पर देखी साल भर ले हमार जो भैया बहनी मन है पैसा मल्ला संजोर के जुटा के रखे रहते कि हमार देखी लैका मन कर स्कूल खुल जाही, हमारे लड़का मन के तैयारी भी करना है, कापी की

ताब हो गई सह है हमार देखी बस्ता के तैयारी करना है उमन का ड्रेस मरेस ला भी सुघर सुघर देखी बढ़िया तैयारी करवाना है ताकि हमार लड़का मन बढ़िया से पढ़ लिख सके। तो यही समय रथे हमार खेती किसानी में हमार देखी जो 2 पैसा जोड़ के रखे रहती काम देते और खेती के संगे संगे हमार जो बहनी मन देखी सोचते कि देखी हमू घर बैठे 2 पैसा कमाए लेतेन का बूता ला करी हमन हमार ला देखी समझ में नहीं आता है। आगू हमन देखी अभी तो कितना समूह के माध्यम से जुड़ जुड़ के बहनी मन ढेरे चकन काम करते हैं। कुछ कुछ बहनी मन सोचते कि हमन का खेती बाड़ी करी जे में कम मेहनत लागे और बढ़िया मुनाफा भी हो जाए। तो संगी हो ऐसे ही एक धर मोर भाई दिमाग में गोट है इसकी मैं काबर नहीं ये विषय में चर्चा करूँ हमार संगी मन से हमार जो खेती किसानी करते हैं वो बहनी मन से कि देखी मशरूम की खेती हमें हमन देखी एज जो समय हवे उमें मशरूम की खेती कर मांग बहुत बढ़ गई से है। हमार जितना भी किसान जो महिला मन है चाहे युवा मन है इमें से देखी बहुत सा आर्थिक लाभ कमाए के ए व्यवसाय से जुड़ी हवे। हमन जानत ही कि बढ़त जनसंख्या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और देखी अपन भोजन के प्रति हमार जैसे जो पौष्टिकता कर जो मांग है मशरूम के बाजार में जो लगातार मांग है ओहर बढ़त जात हवे। तो एक तरह से मशरूम कर खेती हमार आर्थिक लाभ ही नहीं हमार शरीर के स्वास्थ्य पर भी बढ़ियन हवे हर लाभकारी हवे। देखिए मशरूम के खेती में बहुत कम जमीन में हमन लगाए सकते ही चाहे एगो कहीं छोटकुन कमरा हवे चाहे एगो एक छोटकुन झोपड़ी हवे कम लागत में हमन देखी एरे व्यवसाय ला शुरू कर सकते ही कम पूंजी लागत में हमन एक काम ला एक ठो कमरा से ही शुरुआत कर सकते ही। लेकिन एकर बर का है एकर बर हमन ला प्रशिक्षण लेना पड़ी और आजकल तो देखी जगह जगह में हर चीज़ कर हमन ला बड़ा सुविधा मिल गई सा है कि प्रशिक्षण हमार गाँव घर में भी मिल जाता है। तो मशरूम की खेती अगर करना है तो हमन जाए के जो भी आसपास में हमार जो संस्था हमन ला सिखात है ओकर प्रशिक्षण लेके काम कर शुरुआत कर सकत हन। संगी हो देखी लगभग कही कि 10x12 फीट के जो एक कमरा होते मान ले छोटे सा कमरा रहते इतना तो हमार गांव घर में ऐसे ही दिख बेटा है जैसे खारी पड़ रहते हमार उतना में हमन देखी एला कर उत्पादन कर सकत हन। देखी कम से कम एकर जो फसल हवे हमन 30 से 45 दिन के भीतर तैयार हो जाते हमन ला बगरा समय भी नहीं लागते और साल भर देखी एकर उत्पादन हमन कर सकत हन। कितना बढ़िया गोठ हवे कि देखी हमन जो काम ला हमन ला ऐसा नहीं है कि यही समय में करना है यही मौसम में करना है साल भर में हमन कई धार कर सकत हन और एकर बगरा ज़्यादा परेशानी भी नहीं है बगरा कोई ऐसे विशेष भी नहीं लागते खाद है भूसा हवे जितना हमार चाहे धान के भूसा हो गई चाहे हमार गेहूं के भूसा हो गई एकरे बाचल खोचल से एकर उत्पादन बढ़िया से कर सकत है। और देखिए जैसे कहें कि हमार शरीर पर यह कितना लाभकारी है मशरूम एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है जिसमें कि प्रोटीन है विटामिन है खनिज तत्व है हमें भरपूर मात्रा में भेटा थे। हमन सोचथन कि देखिए हमन ला प्रोटीन के स्रोत कहाँ से मिले कर कैसे हमन सेवन करी का ल खई का नहीं खई तो इमें हमार जो मशरूम है इमें प्रोटीन के मात्रा भरपूर मिलते तो हमन एला अपन देखी भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। देखिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग मन के लगातार जैसे जानते हैं जेले लोग मन की है भाई हमन ला ए कर से हमन सेवन से हमार स्वास्थ्य पर बढ़िया है उमन कर दीने कहीं 2-4 दिन के भीतरी मशरूम के साग भाजी सब्जी हर जरूर बनते तरकारी हर तो इला हमन देखिए ऐसे खा सकत हन। देखिए कम जगह में हमन खेती कर सकत हन एकर शुरुआत में कोई पूंजी बगरा नहीं लागते कम समय में एकर उत्पादन कर सकत हन बाजार में ऐसा नहीं हवे कि एकर मांग कर जो कीमत है एकर मांग कम है ऐसा नहीं है एकर कीमत कम है मांग बढ़िया है और कीमतों बढ़िया बैठा थे। अगर हमार बहनी मन देखी घर बैठ के कुछ काम करना चाहते हैं तो एक अच्छा आयकर साधन हो सकता है हमार जैसे कहें कि हमार बगरा समय भी नहीं लागी बगरा जगह भी नहीं लागी बगरा पूंजी भी नहीं लागी तो ऐसे करके हमन इला काम कर शुरुआत कर सकत हन। और बहनी मन ला देखी जैसे कि जानते हैं समूह के माध्यम से भी ये काम ला कर सकते हैं समूह बनाए ली समूह संग भाई आज जो भाई वो बहन देख ले है काल वो बहन देख ले है ऐसे बारी बारी करके काम बैठ के भी बहनी मन इला
कर सकता है। लेकिन एकर देखिए जो बीजा होते एकर जो खाद है जैसे कहें कि गेहूं कर भूसा मन हर लागते ए मन कर कटिक तिहा जतन करना पड़ते, नहीं तो कथें कि देखिए बहरी का हवा घलझन लागे ओकर भाई बहरी कर नहीं तो दे फफूंद मन हर लग जाते एकर थोड़कुन परेशानी। तो इस

सब जानकारी बर हमन ला प्रशिक्षण लेना पड़ी और प्रशिक्षण लेके हमर बहनी मन गांव घर में ही रह के अपन घर कर कोनो कोना में एक काम ला कर सकत हैं। महिला गृह उद्योग के तहत अपन देखी हाथ के हूँ, अगर कुछ भी हाथ में जैसे लागत है कि मैं ये खेती पाती ला कर पाऊँ तो देखी कम लागत में बगरा हमन ला मुनाफा मिलत है तो का बात है भाई। और आजकल देखत में आते है कि ऐसा बहुत सा बहनी मन है जो एक काम बुता संग जुड़ के और देखी अपन आर्थिक लाभ कमाए कर दुगो बढ़िया पैसा कमाए कर साधन बनाइन है और ये मशरूम की खेती ला करत है। तो संगी हो अगर आप मन जग जगह हवे, आप मन अगर लागत है कि नहीं हमन ला घर में ही देके कुछ काम बुता करना है तो ये अच्छा साधन है हमार आर्थिक लाभ कमाए कर। तो देखिए गोड बात करूँ और संगी मन से लेकिन सुघर सुघर गीत मन ला भी लाने हो तो चला मोर जग सुघर अकन कांति कुरे बहन कर गाल गीत हवे छत्तीसगढ़ी एला सुन लेल जाए।

0: हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन हमन छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला सुनेन। संगी हो आज दिन हवे बहनी कर कहनी कर और लाली बहन से गोट बात हो रही साधना बहन कर, तो चली इनकर कहनी ला सुनल जाए।
1: स्वागत है बहनी हो हमार घर गोसाइन कर बहनी कर कहने क्रम में। और आज चलते चलते मोर भेंट ऐसे बहन से हुईस जो कि शादी के बाद भी देखी बहुत बहनी मन के शिक्षा के या कुछ करे के सपना हर अधूरा हो जाए, लेकिन जो ये साधना बहन है बहुत मेहनत और कठिन परिश्रम करके और अपन सपना ला पूरा करता है, उनकरे से हमार गोट बात हुई से। तो चलिए इनकरे जबानी सुनी इनकर कहनी ला। राम राम साधना बहन।
2: हाँ सभी बहनी मन ला राम राम। मोर नाम साधना सिंह है, मैं यहाँ कोटिया गाँव के निवासी हूँ। मोर शादी हो गई से और मोर सपना रहीस कि मैं कुछ आगे करूँ, पढ़ाई पूरा करूं, फिर शादी और एक नई दुनिया, फिर नई नई जिम्मेदारी के बीच पूरा घर का पूरा काम संभालना, सब कुछ मोर बन नया रहीस। लेकिन मन में एक पुराना ख्वाहिश भी रहीस कि हाँ शिक्षक बनना है, लेकिन ओकर वजह से मोला घर में भी घर वाला मतलब पूछे में फिर दिक्कत होइस कि मैं पढ़ाई भी करूँ तो कैसे पूछूँ। फिर बाद में मैं अपन के घर वाला मतलब बताएं कि मोला पढ़ना है, फिर मोर घर के मन भी सपोर्ट करें और मोर घर वाला भी सपोर्ट करी, सर सास ससुर सारा जन मोर साथ देहीन। लेकिन फिर बाद में दिक्कत रहीस कि मैं डेली आना जाना कैसे करूँ। फिर
1: सही बोला था साधना बहन, घर कर और परिवार कर ससुराल वाला मन कर जब तक साथ नहीं होही सपोर्ट नहीं होही तो हम आगू नहीं बढ़ सकत आही। और सही बात है, अपन बात ला अगर हमन अच्छा से समझाए के कहब तो जरूर हमार परिवार वाला मन भी साथ देहीन।
2: लेकिन हमार गांव में ऐसा होते कि एक बार शादी हो गई तो फिर पढ़ाई का सपना बहुत जन के सपना ही रह जाते, बहुत जने पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं हूँ थोड़ा सा हिम्मत जुटाएं, फिर घर वाला मुर ससुराल वाला सबसे पूछें कि मुझे आगे पढ़ाई करना है, फिर मुर पूरा ससुराल का मन भी सपोर्ट करें।
1: और सही बात है भाई, देखिए नया परिवार में जाती और शादी करे के बाद भाई गाँव गोई में यही सोचते कि भाई घर परिवार के जिम्मेदारी ला निभाही कि आगे कैसे पढ़ाई पूरी करही। यही कसम कसम में देखी बहुत जन के शिक्षा आगे बढ़े कर बहनी मन के सपना हर शादी के बाद कहीं कहीं अधूरा भी रह जाते। तो बहनी मन ला राउर के जैसे मेहनत करके जरूर आगे बढ़ना है। फिर राउर कैसे कैसे आगे बढ़े हैं बताए?
2: कॉलेज में एडमिशन तो मिल गए, लेकिन फिर वही दिक्कत कि वैसे भी मोर घर 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो फिर डेली के आना जाना, फिर पढ़ाई करना, फिर शाम के कॉलेज के बाद फिर वापस घर जाना, फिर घर जाके पूरा काम संभालना, खाना पीना, घर द्वार के पूरा बहुत सारा काम रहे थे बहनी।
1: सही बात है, घर बाहर का काम ला करत तो है बहनी मन, लेकिन वही मन जाना था कि कितना मेहनत लगते।
2: फिर घर का पूरा काम करना, फिर कॉलेज से भी बहुत सारा असाइनमेंट प्रोजेक्ट सारा काम मिले, फिर वो सब ला भी पूरा करना, कभी कभी घर में मेहमान भी आ जाते हैं, फिर रोमन के देखरेख भी करना बहुत होए, लेकिन कभी कभी रोना भी है, लेकिन का करिए जब मन में विश्वास रहे तो आगे करना ही पड़ेल कुछ न कुछ।
1: सही बात है, जब हमन मेहनत करब और तन मन धन से भाई लगन से हमन अगर कोई सपना ला पूरा करब तो जरूर पूरा हो ही। और फिर राउर आगे आगे भाई परिवार कर सपोर्ट रहीस, लेकिन देखी खेती पाती कर भी तो काम बहुत है राउर मन के गांव में, तो कर संग राउर सामंजस्य कैसे बैठाया?
2: हाँ जैसे कि हमार कॉलेज में बस सप्ताह में बस 4 दिन नहीं 5 दिन लगे, तो फिर शनिवार रविवार के छुट्टी रहे, फिर घर साइड काम भी रहे, तो फिर घर में भी काम काज में धान पान और सारा चीज में हाथ बटाना पड़ेल, काहे कि घर के कॉलेज के साथ साथ घर भी संभालना पड़ेल। तो कभी कभी ऐसा होएल कि बीच में कभी कॉलेज छूट जाएल, जब कॉलेज अटेंड करते हो तो काम छूट जाएल, तो दोनों के बीच मतलब सामंजस्य बैठाना पड़ेल, काहे कि एकर वजह से पढ़ाई के वजह से घर के काम भी नहीं छोड़ सकत थी।
1: और देखिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है हमार बहनी मन के, अगर शादी के बाद भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो अब तो बहुत सारा माध्यम है।
2: हाँ बहनी ठीक है कहते, शिक्षा तो हम कई माध्यम से प्राप्त कर सकत थी, ऑनलाइन भी पढ़ सकत थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में वो नॉलेज नहीं मिले, जैसे कि स्कूल में जाके बच्चे के बीच मन में, जैसे कि मैं डीएलएड का कोर्स करत हूँ तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड का

0: कोर्स ऐसा है कि जब मन जब तक हम बच्चा मन के बीच में नहीं जाबो, वो मन से बातचीत नहीं करब, वो मन कैसे कार्य व्यवहार करते हैं ओला हमन नहीं जानब, तब तक मतलब ऑनलाइन में वो मुमकिन नहीं है जो हम बच्चा के बीच में जाए मन के जाके सीखा थी। वही कारण से मैं रेगुलर आना जाना करता हूँ।
1: और
0: और
1: भाई स्कूल में भी जाके वो में रहते कि भाई पढ़ाना
0: हाँ,
1: है
0: स्कूल
1: तो
0: में भी इंटर्नशिप में पढ़ाना रहे बच्चा मतलब
1: तो
0: बीच में।
1: रेगुलर ही जो करही वो अच्छा
0: हाँ
1: से कर सकते हैं। जो
0: हाँ
1: बहनी मन डीएलएड करना चाहता है 12वीं के बाद भाई डीएलएड कर जो पाठ्यक्रम है तो डीएलएड करके भी बहनी मन आगू बढ़त है और ग्रेजुएशन करे के बाद बीएड भी कर सकता है। यही कस हवे नी
0: हाँ बीएड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारा कोर्स रहे लो, अच्छा है घर बैठे, लेकिन मैं सोचे कि जब अच्छा से करना है तो रेगुलर जाऊं और वहां जाके अच्छा से शिक्षा प्राप्त करूं, ताकि मुला शिक्षक बने में और बने के बाद भी कोई परेशानी ना हो, मैं बच्चा मल्ला अच्छे से उमन के बीच में अपन
1: जाके उनकर
0: हाँ अपन
1: हाँ
0: जाके वो व्यवहार बात व्यवहार अच्छा से जमा सको।
1: बहुत बढ़िया साधना बहिन। लेकिन हमर जो गांव गई के बहनी मन है जे मन घर में बैठीन है बहनी मन के जे मन के शादी ब्याह हो गई से तो ओमन का कामला करके आगू बढ़ सकता है और कैसे बढ़ सकता है।
0: जैसे कि दीदी हमर गांव में बहुत से बहनी मन आगे अपन काम अपन सपना पूरा करना चाहते हैं, तो बहुत कोई ऐसा होते कि घर में बाहर जाए के परमिशन बहुत कम मिले, जैसा कि गांव में, तो बहनी मन ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आजकल गांव गांव में स्वयं सहायता समूह का काम चलत है, ओकर माध्यम से बहन मन बहुत सारा रोजगार मिल जाते हैं, जैसे कि घर बैठे डोना पत्तल बनाते हैं और सिलाई सिलाई का प्रशिक्षण भी मिले। और
1: अब बहुत सारा बहनी मन तो खुद ही सिलाई ला सीखिन भी नहीं है फिर भी बहुत बढ़िया से सिलाई कर सकता है।
0: हाँ
1: नहीं
0: और
1: करते हैं
0: दलिया
1: मतलब घर में ही खोल के अपन गांव में कमाता है, ब्लाउज सिलता है, साया सिलता है, सूट सिलता है। आजकल तो कई ठन डिजाइन मोबाइल में भी देख देख के हमार बहनी मन बहुत सुघर सुघर सिलाई करत है।
0: हाँ और जैसे ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, दलिया जैसे समूह के माध्यम से दलिया पैकेट रेडी टू ईट फूड बनाते हैं, वैसे बहुत सारा काम समूह के माध्यम से भी करते हैं। और गांव के जो बहनी मन है वो आगे बढ़े बा उमन ला मतलब काफ़ी कुछ करे के सपना पूरा करे के एक अवसर भी मिलते, बहुत कोई ला ना नहीं मिल पाते, तो उमन घर बैठे अपन सुविधा के अनुसार से उमन कोई भी कार्य ला कर सकते हैं।
1: और बहुत बढ़िया है कि भाई बहनी मन घर भी बैठे। और जैसे राउर बताया कि राउर कर 18-19 किलोमीटर दूर यहाँ पढ़े बर डीएलएड कॉलेज में आना पड़ता, तो ऐसे हर कोई के संभव नहीं है। कोई कोई बहनी मन के भाई दुरिया दुरिया भी हो ही तो अपन गांव में भी अपन घर में भी रह के बहुत सारा काम ला करके आगे बढ़ सकता है। और देखिए जैसे बताया कि महिला समूह से भी जुड़ के बहुत बहनी मन आर्थिक रूप से मजबूत होता है। जरूरी है लगन से मेहनत से आगे बढ़ना और आत्मनिर्भर बनना।
0: हाँ दीदी ये बात तो बिल्कुल सही है, जब मन में कोई भी व्यक्ति ठान लेते कि मुके आगे करना है तो ओकर कितना भी मुसीबत आए लोकर सामना करके हम कितना संघर्ष करके वो कार्य पूरा कर ही लेते हैं।
1: राउत के गांव में बहनी मन और काका कामला करके आत्मनिर्भर बनाता है।
0: हमारे गांव के बहनी मन जैसे बकरी पालन करके फिर गाय गाय पालन फिर वहाँ दूध बेच के आगे बढ़ते हैं और मुर्गी पालन करके आगे बढ़ते हैं, यही प्रकार से बहुत से काम गांव में पूरा हुआ थे जेकर माध्यम से गांव के बहनी मन रोजगार मिलत है और वह वो आय प्राप्त करते हैं।
1: और बहुत सारा भाई जहाँ चाह वहाँ राह है तो ऐसा रास्ता है जिला बहनी मन अगर बस सोची तो ओला ओकर रास्ता खुद चुनना है और आगे बढ़ के अपने लगन से परिश्रम से आत्मनिर्भर बन सकता है। बहुत बढ़िया बताया साधना बहिन और आपसे गुड बात करके मुला बहुत बढ़िया भी लागत है। और जात जात अब हमार बहनी मनला का कहना चाहता।
0: तो मैं जात जात अपन बहनी मनला कहना चाहता हूँ कि आजकल शिक्षा बहुत जरूरी है और सभी बहन मन शादी के बाद भी अपन शिक्षा ला पूरा करें और अपन सपना ला पूरा करें और अपन पैर में खड़े हो।
1: सही बात है। सिर्फ शादी हो जाना हमारे सपना के बीच में बाधा नहीं हो सकता है। जरूरी है लगन से परिश्रम से आगे बढ़ना।
0: हाँ दीदी सही कहा था, अगर मन में कोई भी चीज़ ला करे के ठान लेना तो कोई भी मुसीबत हमन ला नहीं रोक सकते है, हमन अपन काम ला करे बा घर तरफ से भी और खुद से भी सामंजस्य बैठाना पड़ेल, घर के काम ला भी देखना पड़ेल और पढ़ाई अपन पढ़ाई ला भी देखना पड़ेल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी

0: मतलब करना है तो अपन मन में आत्मविश्वास होना जरूरी है। आजकल बहनी बन के बस इतना रहेल कि घर के काम करना है, खाना बनाना है।
1: एक सोचे ही रहते कि भाई शादी हो गई इस लड़की तो घर कर जिम्मेदारी, खाना पकाना, घरेलू काम करना, यही जिम्मेदारी हवे।
0: हाँ
1: लेकिन अब ऐसा दौर नहीं है और राउर जैसे बहनी मन भी गांव में रख के भी आगू बढ़ता है।
0: ठीक कहा था। जैसे हम अगर खुद पढ़े रहो तो अपन बाल बच्चा मन अपन आए वाला पीढ़ी ला भी हमन शिक्षित कर सकत ही।
1: सही बात है, ये सबले बढ़िया है कि भाई हमन शिक्षित रहब तबे हमार आए वाला लइका छुआ मन ला, आए वाला समाज ला, आए वाला पीढ़ी ला भी हमन शिक्षित करके और आगे बढ़ा।
0: हाँ, मैं आप सभी बहनी मन से यही कहना चाहत हूँ कि सब कोई अपन पढ़ाई ला पूरा करा, अपन पैर में खड़ा हुआ, आत्मनिर्भर बना। और हम महिला मन रसोई में खाना बनाए से लेकर रोटी बनाए से लेकर रोटी कमाए तक का हमारे में हिम्मत रखना चाहिए और हम ये सब कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया बात बोले हाँ, रोटी बनाए से लेकर रोटी कमाए तक ये भी सफर हमर जिम्मेदारी है और हमर कठिन परिश्रम करब तो जरूर पूरा हो ही है नहीं, माने
0: हाँ
1: कि आत्मनिर्भर हो कर सपना। तो इतना बढ़िया हमार संगे गोइट बात करे बर राउर कर ढेरे ढेरे धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ त संगी हो देखी लाली बहन से गोट बात होए रहीस, हमर साधना बहन के बड़ा सुघर कहनी ला अपन जर्नी ला हमन ला साझा करिन और बताइन कि देखी शिक्षा कर का महत्व है और देखी शादी बिहाव के बाद पढ़ाई लिखाई भी होए सकता है तो पीछे नहीं हटना है, पढ़ते लिखने लिखते रहना है, अपन जिंदगी ला करते रहना है। देखी लाली बहन के गोट रहीस, लाली बहन के गोट बात आओ देखी सुगर सुगर हमन लाली लाली बिंदिया गीत मल्ला भी लाने हन तो लाली बहन के गुरतुर बोली के संग एक गीत ला भी सुन सकत ही, चली सुनी।
3: रोज देखी ला मन में आखी ला रौवा चिनवा।

तो देखी सुघर अकन भोजपुरी लोकगीत ला सुनेन हमन मोहम्मद खलील कर गाल गीत रहिस। संगी हो देखी आज कर कार्यक्रम हर कैसे लागिस, भाई हमन मशरूम के खेती कर गोट करेन, संगे संगे हमार बहनी के कहनी ला सुनेन और संगे सुघर छत्तीसगढ़ी भोजपुरी गीत कर भी आनंद लेहेन। तो देखी संगी मन साग भात रांधत रांधत हमार कार्यक्रम ला भाई सुनिन होही और संगे संगे तरकारी मन घल सुघर सुघर पैक गईस होही भाई, आलू भुंजिया भिंडी भुंजिया मन भी, तो संगी मन बैठ के गीत मन ला सुन सुन के भोजन भी कर धारिन होही। तो मैं जात जात यही कहूँ स्वस्थ रही हा मस्त रही हा, फिर भेटा हूँ सुमतिया बहिन लदा विदा, जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो साथी धरती। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म हरियाली और रास्ता से। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हस्टा जयपुरी ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा, लक्की, सीताराम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगल मूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूरसा राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता और आरती मरकाम, राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चित्रंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रविशंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू, रानीगंज बंगाल से रवि औरिंदर, बढ़वा जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा, ग्राम पंचायत पठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलगरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, ग्राम बुड़गन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, समतानगर काष्ठी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया सिंधे, निशान जगताप और मानसी सिंधे, दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

रफ़ी ने, संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन की और शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने, रजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह।

उल्लगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामणि शिंडे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से सुपचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान, सौरभ, शायना और मैंडी शर्मा। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुली क्षत्रिय। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा, कृष्णपाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा और सीता, साजीनगर देकलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, हटरी चौक बुलाईगढ़ से खीखराम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी और प्रियंका देवांगन, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलकर और रतनमाला, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, पुराना तालाब डुमराव से वल्लीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अधीबा, ऊपरकोट मोहल्ला चखुंटे बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अजान और अबान अब्बासी, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघाई, महेश संघाई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघाई, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर, बन वगैरह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ममता फिल्म का ये खूबसूरत संगीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत निर्देशन है रोशन की और शब्द रचना है मजरूह सुल्तान फरी की।

कार्यक्रम में अब सुनिए ममता फिल्म, माफ कीजिएगा, नूरी फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है नक्श लयालपुरी ने, संगीत से सजाया है खयाम ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की। इस गीत के फरमाइश करता है अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल, सोपान तायड़े और नारायण इंगले, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले, रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनसर रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमश खत्री और मोहम्मद सादाब खत्री, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार टूटी, प्रमोद कुमार टूटी और सौरभ टूटी, राजकोट से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कंचन, कुसुम, कलावती सोनी, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीके साहू। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में पेश है महेंद्र कपूर की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा एक खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हमराज से। संगीत दिया है रवि ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है आकोट से विनायक पेंडे, श्रीमती मंगला पेंडे, शुभम पेंडे, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, ददरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा एमपी से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, बेबी आयशा खत्री, बने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, ददरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, मिठू मुंडा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई, चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और लखनलाल देवांगन। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यह प्यारा सा गीत।

0: महेंद्र कपूर के गायज गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से

0: पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कुनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कुनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना

0: हरियाणा में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने

0: न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं, जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गीत, जिसे गाया है पंकज उदास ने। गीत के बोल लिखे हैं जफर गोरखपुरी ने।

कार्यक्रम में आप सुनते हैं आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत। संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने, गीत लिखा है निधा फाजली ने।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार सानू का गाया ये गीत। संगीतकार है शिबू पिंटू, गीतकार है नुसरत पत्रम।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू का गाया ये गीत। संगीत दिया था शिबू पिंटू ने और गीत के बोल लिखे थे नुसरत पत्र ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गंधा में आज इतना ही। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। सभा समाप्ति से पूर्व आइए एक नज़र डालें आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:05 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय है शाम 5:30। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। लोकगीत के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया और सादरी लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुनते हैं शाम 6:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा में शाम 7:05 पर आप सुनेंगे चंद गजलें। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर, जिसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम। क्रम आजकल में चर्चा का विषय होगा मूंगफली की खेती की उन्नत तकनीकी और प्रधानमंत्री धन्यधान्य कृषि योजना। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात 9:15 पर। रात 9:30 पर हम लेकर आएंगे आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी और रात 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन का प्रसारण किया जाएगा। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आज शाम 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, हरिहरपुर, शिवपुर, महावीरगंज, पेंडारी, कोटराही, तनवारी, भगवानपुर, नवापारा, चांची, खोडरो, उधवा कटरा, मंदरी डांड, झींगा डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, जामटोली, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 159 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासुल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गणेश वंदना।

कार्यक्रम के अगले क्रम में लीजिए सुनिए सुमंगल अरोड़ा की आवाज में ये भक्तिमय प्रस्तुति। संगीत निर्देशन भी है सुमंगल अरोड़ा का।

गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या अभी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में लीजिए सुनिए रैनकोट फिल्म से ये गीत शुभा मुद्गल की आवाज में। गीतकार हैं ऋतुपर्ण घोष, संगीत निर्देशक हैं देबू ज्योति मिश्रा।

हंसराज रघुवंशी के गाए इस शिव भजन के बाद कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए माँ फिल्म का ये भक्ति गीत। आवाज है उषा उत्थुप की, बोल प्रणव वत्स के हैं और संगीत है हर्ष उपाध्याय।

माँ फिल्म के इस भक्ति गीत के साथ ही गैर फिल्मी और फिल्मी भजन का कार्यक्रम भजन संध्या बस यहीं तक। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रागिनी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहां बात होती है दिल की। दोस्तों, अगर आज आपको ये कहा जाए कि आप अपनी ज़िंदगी की कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? कोई कहेगा एक शानदार करियर, कोई कहेगा अपना बिजनेस, कोई दुनिया घूमने का सपना देखेगा और कोई अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहेगा। सपने, ये एक ऐसा शब्द है जो हर युवा के दिल में धड़कता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सपने और हकीकत के बीच की दूरी कितनी होती है? बस उतनी ही जितनी सोचने और करने के बीच की होती है। दोस्तों, युवा होना अपने आप में एक खूबसूरत सफ़र है। इस उम्र में आँखों में सपने होते हैं, दिल में सुकून होता है और मन में दुनिया बदल देने की ख्वाहिश। लेकिन इसी उम्र में सबसे बड़ा भ्रम भी होता है। हमें लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है। किसी का वायरल वीडियो देखकर हम सोचते हैं, यार इसकी तो किस्मत चमक गई। लेकिन हम वो रातें नहीं देखते जब उसने हार नहीं मानी। हम वह संघर्ष नहीं देखते जो कैमरे के पीछे छिपा होता है। आज की दुनिया हमें सफलता का परिणाम दिखाती है, प्रक्रिया नहीं। और यहीं से शुरू होता है सपने और हकीकत का असली खेल। सपने कहते हैं तुम कर सकते हो, हकीकत कहती है तो फिर शुरू करो। सपने कहते हैं एक दिन मैं सफल बनूंगा, हकीकत पूछती है आज उसके लिए क्या किया। दोस्तों, एक पतंग आसमान में तभी तक उड़ती है जब तक उसकी डोर ज़मीन से जुड़ी रहती है। अगर डोर टूट जाए तो कुछ पल की आज़ादी के बाद वह कहीं भी गिर सकती है। ठीक यही बात हमारे सपनों पर भी लागू होती है। सपनों की उड़ान ज़रूर है, लेकिन हकीकत की डोर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज का युवा अक्सर दो चीज़ों के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ उसके सपने हैं और दूसरी तरफ समाज की अपेक्षाएं, कंपटीशन, असफलता का डर और भविष्य की चिंता। लेकिन शायद जीवन का अर्थ इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाना है, क्योंकि सपने हमें आगे बढ़ाते हैं और हकीकत हमें गिरने से बचाती है। दोस्तों, असफल होना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब हम कोशिश करना छोड़ दें। याद रखिए, सपना वो नहीं जो सोते समय दिखाई दे, सपना वो है जो जागते हुए चैन से बैठने ना दे। और ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ उम्मीद नहीं, अनुशासन भी चाहिए। तो दोस्तों, इसी चर्चा के बाद समय हो चुका है एक प्यारे से गीत का। तो आइए सुनते हैं फिल्म फाइटर से ये गीत, बी प्राक और विशाल शेखर की आवाज़ में।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्रम इंद्रधनुष की ओर।

स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंद्रधनुष कड़ी क्रमांक 77 में। आज की कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, जम्बू द्वीप किस देश का प्राचीन नाम है। प्रश्न एक बार फिर, जम्बू द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था। हमारा दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। प्रश्न एक बार फिर, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कितने देश मिलकर कर रहे हैं। मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहराती हूँ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कितने देश मिलकर कर रहे हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किस स्रोत से प्राप्त होता है। प्रश्न एक बार फिर, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किस स्रोत से प्राप्त होता है। पांचवें प्रश्न के रूप में आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुने इस गीत के कुछ अंश, जिसमें आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और ये फिल्म कब रिलीज हुई। अब मैं आपको पिछली कड़ी के प्रश्नों के सही जवाब और विजेताओं के नाम बता देती हूँ। पिछली कड़ी में जो हमने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में हो रहा है, इसका सही जवाब है इंग्लैंड और वेल्स। दूसरे प्रश्न के रूप में हमने पूछा था, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, जिसका सही जवाब है गंगा नदी डॉल्फिन। तीसरे प्रश्न के रूप में हमने पूछा था, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में किस स्तर की सरकार कहा जाता है, जिसका सही जवाब है स्थानीय स्वशासन। चौथे प्रश्न के रूप में पूछा था हमने, अकबरनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था, जिसका सही जवाब है अबुल फजल ने। पांचवें प्रश्न के रूप में हमने आपको सुनवाए थे ये गीत।

दोस्तों, पांचवें प्रश्न के रूप में हमने आपको इस गीत के अंश सुनवाए थे, जिसमें आपको बताना था इस गीत के गीतकार का नाम, जिसका सही जवाब है समीर। अब मैं आपको ईमेल भेजने वाले श्रोताओं के नाम बता देती हूँ। हमें ईमेल भेजा है अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा ने। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार ने। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालौत से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका और मास्टर अल कबीर ने। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े ने। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदी लहरे ने। रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। कर्मा चौक लोहारी डी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत, ललिमा और निशांत साहू ने। कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद, पूर्णेंद और साहिल चंद्राकर ने। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमी, स्नेहा और वान्या सिंगरौल ने। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा ने। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर, नयन और सुमांशु पांडे ने। बंगला मटिया बालौत से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना, आशुतोष अंगारे ने। लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी ने। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी और विभूति साहू ने। बठेना पाठन से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश और प्रमीला बंछोर ने। महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता ने। पीपर पारा पालचुआ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर ने। ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा ने। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश और कंचन सेन ने। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन एले और नवदीप एले ने। परसाटोला से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, तुषारणी और खुमेंद्र मसिया ने। भाटापारा दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा ने। आप सभी श्रोताओं को हमें ईमेल भेजने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी भी आज पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब हमें जल्द से जल्द पत्र और ईमेल के माध्यम से भेजिए। हम आपको हमारी अगली कड़ी में प्रश्नों के सही जवाब और श्रोताओं के नाम बताएंगे। पत्र भेजने का हमारा पता है क्रम इंद्रधनुष युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। और हमारी ईमेल आईडी है इंद्रधनुष@gmail.com। इसी के साथ आज का क्रम इंद्रधनुष बस यहीं तक।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से ये गीत। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं विशाल ददलानी और जारा खान की आवाज़ में फिल्म कोई जाने ना से ये गीत। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया है तनिष्क बाग्शी ने।

दोस्तों इसी गीत के साथ समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बताते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पे, फिर क्रम चैंपियंस और फिल्म संगीत। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रागिनी चौबे को। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में

0: में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का विचार संघर्ष विषय पर। वाचन एवं संकलन है मृदुल वर्मा का।
3: एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में कठिनाइयों, चुनौतियों और निरंतर प्रयास की छवि उभरती है। वास्तव में जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिस दिन मनुष्य संघर्ष करना छोड़ देता है उसी दिन उसकी प्रकृति रुक जाती है। प्रकृति का प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्रक्रिया हमें संघर्ष का महत्व सिखाती है। यदि हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि एक छोटा सा बीज भी वृक्ष बनने के लिए संघर्ष करता है। वह मिट्टी की कठोर परतों को चीरकर बाहर निकलता है, धूप, वर्षा और तूफानों का सामना करता है, तभी कहीं जाकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। इसी प्रकार नदी भी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों और बाधाओं को पार करते हुए

0: हुए समुद्र तक पहुंचती है। प्रकृति का यह संदेश स्पष्ट है कि बिना संघर्ष के विकास संभव नहीं है। मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्षों से भरा रहता है। बचपन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष, युवावस्था में रोजगार और पहचान बनाने का संघर्ष तथा वृद्धावस्था में स्वास्थ्य और सम्मान बनाए रखने का संघर्ष। जीवन के हर चरण में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह चुनौतियां हमें मजबूत और अनुभवी बनाती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया के सभी महान व्यक्तियों ने संघर्ष का मार्ग अपनाकर ही सफलता प्राप्त की है। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए अनेक कष्ट और यातनाएं सहन की। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष ने पूरे देश को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। इसी प्रकार APJ अब्दुल कलाम का जीवन भी संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी है। साधारण परिवार में जन्म लेने वाले कलाम जी ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा प्राप्त की और अपनी मेहनत तथा लगन से भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि व्यक्ति में दृढ़ निश्चय हो तो वह किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। संघर्ष का अर्थ केवल बाहरी समस्याओं से लड़ना नहीं, कई बार सबसे बड़ा संघर्ष अपने भीतर की कमजोरियों, भय, आलस्य और नकारात्मक विचारों से होता है। जब कोई व्यक्ति अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, अपनी कमियों को सुधारता है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, तब वह वास्तविक संघर्ष करता है। आज के युवाओं के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार की तलाश, आर्थिक दबाव, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाएं, ये सभी जीवन को कठिन बनाती है। कई बार असफलता मिलने पर निराशा घेर लेती है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि असफलता सफलता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक विद्यार्थी जब किसी परीक्षा में असफल होता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला कि वो हार मान ले और प्रयास करना छोड़ दे। दूसरा, अपनी गलतियों से सीखकर पुनः मेहनत करे। जो विद्यार्थी दूसरा रास्ता चुनता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। यही संघर्ष की वास्तविक भावना है। संघर्ष आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं तो हमारे भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। हमें लगता है कि यदि हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं तो भविष्य की चुनौतियों का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह हमें विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वह दूसरों के दुख और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझता है। उसके भीतर संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास होता है। इसलिए संघर्ष केवल सफलता ही नहीं देता बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों के बावजूद अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति शारीरिक विकलांगता के बावजूद खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, कोई आर्थिक अभाव के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो कोई विपरीत कठिनाइयों का सामना करते हुए भी परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा है। ऐसे लोगों की कहानियां हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने वे टिक नहीं सकती। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, सूर्योदय निश्चित है। संघर्ष के क्षण अस्थाई होते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला अनुभव और सफलता स्थाई होती है। यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि जिन उपलब्धियों पर हमें सबसे अधिक गर्व होता है वे अक्सर उन्हीं संघर्षों का परिणाम होती हैं जिन्हें हमने साहस और धैर्य के साथ पार किया था। इसलिए संघर्ष से घबराने की बजाय उसका स्वागत करना चाहिए।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे संघर्ष विषय पर विचार। संकलन एवं वाचन स्वर था मृदुल वर्मा का। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में प्रसारित किए जाएंगे।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री हा आज रायपुर के रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष ट्रेन ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करिन। दुर्ग पुलिस हा ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्यीय गिरोह के खुलासा करे है। और छत्तीसगढ़ में आज मानसून के दस्तक। मौसम विभाग हा दंतेवाड़ा जिला ले दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष ट्रेन

0: ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करिन। ये मौका मा श्री सायहा कहिन कि सोमनाथ मंदिर हमर राष्ट्रीय स्वाभिमान सांस्कृतिक गौरव और आस्था के प्रमुख केंद्र हे। सोमनाथ मंदिर ला कतकोन घाव विदेशी मन हा तोड़िन, फिर हर घाव मंदिर ला बना लेगीस। एहा देशवासी मन के अटूट आस्था ला दिखा थे। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल हा कहिन कि सोमनाथ धाम के ये यात्रा श्रद्धालु मनला सिर्फ आध्यात्मिक अनुभूति भर नहीं देही, एकर अलावा भारत के महान सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव ला जाने के मौका घलो दीही। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन ले प्रदेश ले सोमनाथ भर 1000 ले ज्यादा विशिष्ट लोगन पद्मश्री राज्य और राष्ट्रीय सम्मान ले सम्मानित कलाकार और साहित्यकार मन रवाना होइन। यात्रा में शामिल श्रद्धालु मन हा छत्तीसगढ़ के शिव मंदिर मन के पावन भूमि के माटी कलश और पवित्र नदी के जल कलश बाबा सोमनाथ ला अर्पित करही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ला वैश्विक उत्सव बनाए बर दुनिया भर के लोगन बर अपन आभार जताइन हे। सोशल मीडिया पोस्ट मा प्रधानमंत्री हा कहिन हे कि ये देख के खुशी होते कि योग सबो क्षेत्र औ आने आने देश के लोगन ला स्वस्थ जीवन के एक संग्रह खोज मा एकजुट करत हे। उहें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में काली बीजापुर जिला में कर्रेगुट्टा पहाड़ी में घलो सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान मन हा सामूहिक योगाभ्यास करिन। ब्लैक फॉरेस्ट के नावले प्रसिद्ध 5000 फीट ऊंचा ये पहाड़ी हा कभू माओवादी मन के सबले सुरक्षित गढ़ रहीस, फिर पाछू बछर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बल के टीम हा माओवादी मन के गढ़ ला ध्वस्त कर दे रहीस और तलाशी अभियान में यहाँ ले भारी मात्रा में हथियार और 450 ले ज्यादा आईडी बरामद करेगी रहीस। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस 2.0 सर्वे के आखिरी प्राथमिकता सूची बनाए बर 24 जून के राज्य के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मा ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ये ग्राम सभा मा आवास योजना बर सर्वेक्षण के आधार मा तैयार सूची ला सार्वजनिक रूप ले पढ़ के सुनाए जाही। यदि कोनो पात्र हितग्राही के नाव सूची मा नहीं आही या कोनो प्रकार के कमी दिखी त ग्रामीण मन हा ग्राम सभा मा दावा औ आपत्ति पेश कर सकही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए के मौका में नारायणपुर जिला में अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजना के फायदा लोगन तक पहुंचाए बर 3 दिवसीय शिविर लगाएगीस। विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान में लगे ये शिविर में प्रशासन ला मिले 396 आवेदन में 277 मामला के मौकाच में निपटारा करेगीस। राज्य में खनिज संसाधन के संरक्षण नियम के अनुसार ओखर उपयोग और अवैध गतिविधि पर रोक लगाए बर सरलग कार्रवाई करे जाते। एक कड़ी में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता के संग्रह टीम हा शिकायत के आधार में काली और आज आने आने जिला में औचक निरीक्षण करके जांच अभियान चलाईस। ये दौरान बलौदा बाजार के खपरीडी में चूना पत्थर के भंडारण स्थल और खदान में अनियमितता पाए जाए में 6 क्रशर इकाई ला सील बंद करके वहां के संचालक मनला नोटिस जारी करेगी। इसने सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम दहिदा में महानदी क्षेत्र में अवैध रूप ले रेत खनन करैया मशीन ला जब्त करके सील बंद कर देगी। एकर अलावा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के दंडा स्वाही मा केवाई नदी पसौरी कुटरा और हसदेव नदी क्षेत्र के अवैध रूप ले रेत उत्खनन करैया मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करे गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मैं आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा पुलिस हा आतंकी संगठन आईएसआई के संपर्क में होए के आरोप में एक जन युवक ला गिरफ्तार करे है। पंजाब निवासी सेवक सिंह ऊपर आरोप है कि वह अकलतरा में रह के ठेकेदारी के काम के आड़

0: मा मोबाइल के माध्यम ले गोपनीय जानकारी विदेश भेजत रहीस। जांच मा ओखर संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको ले जुड़े होए के बात आगू आए हे। पुलिस हा ओखर मोबाइल जब्त करके जांच बर साइबर सेल ला भेज दे हे। दुर्ग पुलिस हा ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्यीय गिरोह के खुलासा करे हे। ए मामला मा 3 झर आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गे हे। आरोपी मन तीर ले 81 ठन एटीएम कार्ड, 62 ठो बैंक पासबुक, 5 ठन चेकबुक, 13 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 1 ठन लैपटॉप और हार्ड डिस्क संग्रह करीबन 2.5 लाख रुपया मूल्य के सामान जब्त करे गे हे। पुलिस ला सूचना मिले रहीस कि ITI खेल मैदान तीर कोनो युवक मन हा लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम ले ऑनलाइन जुआ सट्टा चलावत हैं। सूचना के आधार में पुलिस हा घेराबंदी करके आरोपी मन ला गिरफ्तार करिस। पूछताछ में आरोपी मन हा ऑनलाइन सट्टा खेलाए के और एखर बर आर्थिक रूप ले कमजोर लोगन के नाव ले म्यूल खाता खुलवाए के बात ला कबूलिन। पुलिस हा लोगन ला अपील करे है कि ओमन हा कोनो भी मनखे ला अपन बैंक खाता, ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग करे बर झन देवें, काबर की ऐसन दस्तावेज के उपयोग साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टा, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसन अवैध काम बर करे जा सकत है। संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय रायपुर मा काली 23 जून के पेंशन संवाद के आयोजन करे जाही। ए कार्यक्रम विशेष रूप ले ओ पेंशन भोगी मन बर हे जौन मन हा संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय के छत्तीसगढ़ सर्कल ले अपन पेंशन पावत हैं। ए दौरान पेंशनर मन के समस्या के निपटारा करे जाही और उनखर सुझाव सुने जाही। कबीरधाम जिला के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना हा सरलग दूसर बछर जून महीना चमा किसान मन ला समर्थन मूल्य और उपराह राशि के भुगतान करके देश के सहकारी शक्कर उद्योग मा नवा कीर्तिमान बनाए हे। कवर्धमा काली हो एक ठन कार्यक्रम मा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा 29,43,00,000 रुपया ला सीधा किसान मन के बैंक खाता मा भेजिन। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप हा दंतेवाड़ा जिला में ढोलकल ट्रैकिंग रूट के लोकार्पण करिन। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीबन 61,00,000 रुपया के लागत ले एला बनाए गया हवे। आशा जताई जावत है कि रद्दा के शुरू होले क्षेत्र में साहसिक पर्यटन ला बढ़ावा मिलही और स्थानीय युवा मन ला रोजगार के नवा मौका मिलही। कलकत्ता में हुए ऑल इंडिया ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के स्केटर मन हा सुघर प्रदर्शन करत 15 ले ज्यादा पदक जीते हवे हैं। एमा विशेष रूप ले भिलाई ले चुने गए सबो 8 खिलाड़ी मन हा पदक हासिल करिन हैं। देश भर के 400 ले ज्यादा खिलाड़ी मन के ये प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन पर खेल संगठन और खेल प्रेमी मन हा खुशी जताइन है। अब पेश है मौसम के हाल। छत्तीसगढ़ में आज मानसून हा दस्तक दे दे है। मौसम विभाग हा दंतेवाड़ा जिला ले प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हा आकाशवाणी समाचार ले बात करत अवैया 24 से 48 घंटा के दौरान राज्य के कतकुन हिस्सा में वर्षा के गतिविधि बढ़े के संभावना जताइन है। अब थोरकुन समाचार सार मा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी मन हा शिक्षा सत्र 2026-27 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण पर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकत हैं। और कोरबा शक्ति मुख्य मार्ग में ट्रैक्टर के टक्कर ले दुपहिया में बैठे एक झन युवक के मौकाचमा मौत हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। मुख्यमंत्री हा आज रायपुर की रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष ट्रेन ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करें। दुर्ग पुलिस हा ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्यीय के खुलासा करे है और छत्तीसगढ़ में आज मानसून के दस्तक। मौसम विभाग हा दंतेवाड़ा जिला ले दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं धर्मेंद्र प्रसाद और साथियों की आवाज़ों में सरगुजिहा लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम माधुरी का। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म हंसी तो फंसी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं सनम पुरी और शिप्पा गोयल की। संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का और गीतकार हैं कुमार।

कार्यक्रम की अगली कड़ी में आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में हंगामा फिल्म का ये प्यारा सा गीत। बोल समीर के हैं, संगीत है नदीम और श्रवण का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के संयुक्त स्वर में बागबान फिल्म का गीत। समीर के बोल हैं, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

बागबान फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर

0: का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत आज रायपुर से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मानसून ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लेखा नियंत्रक का कार्यालय रायपुर द्वारा कल पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केंद्र है।
1: आज बड़ा सुबह का विषय है कि छत्तीसगढ़ से 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में, जिनको आज हम लोग ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं, इसमें पद्मश्री भी हैं, इनका पूजा अर्चन करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे।
0: संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सोमनाथ धाम की यह यात्रा श्रद्धालुओं को केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव को निकट से अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करेगी। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से प्रदेश से सोमनाथ के लिए 1000 से अधिक विशिष्टजन, पद्मश्री, राज्य और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार तथा साहित्यकार रवाना हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के शिवालयों की पावन भूमि के माटी कलश और पावन नदियों का जल कलश बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा जिले से प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की पुष्टि की है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है।
2: आज 22 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून 2020 छत्तीसगढ़ में ऑनसेट किया गया है। दंतेवाड़ा तक मानसून का प्रोग्रेस हुआ है और प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून प्रदेश में सामान्य तिथि की तुलना में करीब 10 से 12 दिन की देरी से पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री

मंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल बीजापुर जिले में कभी माओवादियों का गढ़ रही कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर भी सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर 5,000 फीट ऊंची यह पहाड़ी कभी माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने माओवादियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था।

ऊंची या पहाड़ी कभी माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले वर्ष ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने माओवादियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था और तलाशी अभियान के दौरान यहां से भारी मात्रा में हथियार तथा 450 से ज्यादा आईडी बरामद किए गए थे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस 2.0 सर्वे की अंतिम प्राथमिकता सूची के निर्माण के लिए 24 जून को राज्य की 11,600 अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में आवास योजना के लिए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि किसी पात्र हितग्राही का नाम सूची में नहीं है अथवा किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो ग्रामीण ग्राम सभा में दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य में खनिज संसाधनों के संरक्षण, उनके नियमानुसार उपयोग और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने शिकायतों के आधार पर कल और आज विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण कर जांच अभियान चलाया। इस दौरान बलौदाबाजार में खपरीडीह में चूना पत्थर के भंडारण स्थल और खदानों में अनियमितता पाए जाने पर 6 क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए। इसी प्रकार सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम दहीदा में महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे मशीन को जब्त कर सीलबंद किया गया। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दंडाह स्वाही स्थित केवाई नदी, पसौरी, कुटरा तथा हसदेव नदी क्षेत्र के अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और हार्ड डिस्क सहित करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग के लिए ना दें, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों का उपयोग साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टा, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआई के संपर्क में होने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पंजाब निवासी सेवक सिंह पर आरोप है कि वह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी के काम के आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी विदेशों में भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने लगातार दूसरे वर्ष जून महीने में ही किसानों को समर्थन मूल्य और अतिरिक्त रिकवरी राशि का 100% भुगतान कर देश के सहकारी शक्कर उद्योग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कवर्धा में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 29,43,00,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीब 61,00,000 रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के विकास के जनकल्याण के अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय रायपुर में कल 23 जून को पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए है जो संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय के छत्तीसगढ़ सर्कल से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और उनके सुझाव सुने जाएंगे। कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के स्केटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 से अधिक पदक जीते हैं। इनमें विशेष रूप से भिलाई से शामिल सभी 8 खिलाड़ियों

0: ने पदक हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें जिला आबकारी अधिकारी और सहायक जिला आबकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रवीण वर्मा को रायपुर जिले का प्रभारी आबकारी उपायुक्त बनाया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में तकनीकी कार्य की वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन और हीराकुंड एक्सप्रेस 16 से 20 जुलाई के बीच परिवर्तित मार्ग से चलेगी। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कोरबा शक्ति मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से दोपहिया सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत आज रायपुर से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मानसून ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लेखा नियंत्रक का कार्यालय रायपुर द्वारा कल पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

अब से थोड़ी ही देर में शाम 7:05 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:20 पर। इसमें सामयिक चर्चा में आज आप सुनिएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर चर्चा। आजकल में आप सुनेंगे मूंगफली की खेती की उन्नत तकनीक और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। रात्रि 8 आप सुन सकेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। रात्रि 9:15 पर हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 9:30 पर होगा ईमेल की गूंज और रात्रि 10 आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में श्रीमती मंजू मेहता का सितार पर बजाया राग पूरिया कल्याण और लक्ष्मण फूल पगारे का तबला वादन। रात्रि 10:30 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं कल यानी 23 जून 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर होगा विचार बिंदु। गोस्वामी तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का गायन आप सुन सकेंगे प्रातः 6:35 पर। इसमें गायन स्वर होगा श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का, संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया। कार्यक्रम खेती की

बात में कल आप सुनेंगे सब्जियों की लाभकारी खेती विषय पर सामयिक सुझाव सुबह 6:45 पर। सुबह 7 बजे आप सुनिएगा गूंजे जंगल में सरगुजिया और सादरी लोकगीत। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 7:15 पर और 7:30 पर आप सुन सकेंगे नमस्कार सरगुजा जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन हम लेकर आएंगे सुबह 9 बजे और 10 बजे आप सुनिएगा आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। मोर भुइयां छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से सुबह 8:30 पर रिले करेंगे। 10:30 पर आप सुनिएगा नए तराने। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम पेश करेंगे दिन में 11:05 पर। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे 12:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनिएगा 12:30 पर। 1:10 पर होगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बातचीत का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और गर्भावस्था में आवश्यक है टीकाकरण और जांच। आईना क्रम में आप सुन सकेंगे समसामयिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम। ईमेल की गूंज हम प्रस्तुत करेंगे 12:40 पर और गीत गंधा हम आपको सुनाएंगे 2:30 पर। शाम 5 बजे आप रोज ही की तरह सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ और 5:05 पर भजन संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनिएगा शाम 6:05 पर और 6:20 पर आप सुन सकेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। फिल्म संगीत आप सुनिएगा कार्यक्रम माधुरी में शाम 6:30 पर और चित्रपट संगीत में रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम पेश करेंगे शाम 7:05 पर। कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन हम आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनिएगा सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश और रात्रि 10:30 पर मन भावन। ये थी हमारे केंद्र से कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की युगल स्वर में ये गज़ल। लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कार्यक्रम के अगले क्रम में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के मधुर स्वर में ये गजल। बोल बसु चक्रवर्ती के हैं और संगीत निर्देशन

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की युगल स्वर में ये गजल। लिखा है जगजीत सिंह ने और संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के गाए इस गजल के साथ ही कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनने वाला जम्मू किसान भैया बहनी मनला राम राम जय जोहार। किसान भैया बहनी हो, देखी भाई अभी मौसम हर कही कि नहीं, यदि बरखा कर आएगी से है और देखा तहन कि कोनो कोनो कति भाई पानी कर बूंदी घलो गिरत है और कोनो कोनो कति तो भाई दे देखा तहन कि उमस घलो खो गई से है। ये बदलत मौसम में देखी हमन ला जरूरत है, अगर खेती किसानी कर गोइट करी तो देखी भाई हमन ला जरूरत है स्मार्ट खेती। स्मार्ट खेती मतलब कहे लेकिन हमन ला आज कर समय में जो है वैज्ञानिक तरीके से खेती करना पड़े। काबर कि मौसम कर देखी तरंग लठंग, कभी समय ऊपर बरखा आता है कभी नहीं आते, कई तरह से परिस्थिति जो है आते। और जब प्रकृति कर बात करते हैं तो देखिए वरण वरण कर परिवर्तन होत रहते जिला हमन कही जलवायु परिवर्तन कथा। और ये बदलत मौसम कर दौर में देखी खेती किसानी करना एक बहुत बड़ा चुनौती है। और ऐसन में देखते हैं कि कभी कभी देखी बरखा कम हो जाए, कभी सूखा

अगर स्थिति हो जाए, कभी जो है ढेरे गर्मी हर बढ़ जाए, और कभी कभी तो ऐसा होल कि ढेरे जो है बरखा पानी होल और यदि ओलावृष्टि मन होते, तो ऐसा समय में अगर हमार सही जानकारी नहीं रही या सही हमन थोड़ा वैज्ञानिक विधि कर ला नहीं अपना, तो निश्चित रूप में जितना हमन मेहनत करब ओकर हिसाब से फल ला नहीं पाब। तो ऐसा में जरूरत है कि हमन ला स्मार्ट खेती करी और जो तकनीक हमार वैज्ञानिक मंदहीन है तो वो तकनीक ला अपनाए के हमन खेती करी, तो निश्चित रूप से हमन जो है अच्छा उत्पादन कर पाबो। खास करके मैं कहना ये चाहत हूँ कि भाई स्मार्ट खेती के एक मतलब हमन ला जो हमार आज कर समय कर मांग है, आज कर जरूरत है, और स्मार्ट खेती कर अगर अर्थ ला कही तो आधुनिक तकनीक मतलब नवा नवा जो तकनीक आवता है, और ख़ास करके जो हमार कृषि विज्ञान केंद्र से जो हमार वैज्ञानिक मन सलाह देता है, और ख़ास करके गाँव में जो कृषि विस्तार अधिकारी मन है उमन से सलाह लेके अगर हमन खेती करब तो निश्चित रूप से देखिए बहुत अच्छा हमार फसल हर उत्पादन होगी। तो स्मार्ट खेती करना आज कर जरूरत है, और एकर संग संग अगर कुशलता के साथ जिला कहते हैं भाई हमन अगर करत है खेती किसानी तो कम लागत में अधिक से अधिक जो है उत्पादन हमन प्राप्त कर सकत हन। तो ऐसा में किसान भैया बहनी हो ये जो चुनौती आते या ये जो परिस्थिति निर्मित हो जाते या ये संकट आते तो ऐसा में हमन ला पहले से तैयार रहना है। अगर बरखा नहीं है तो भी हमन ला अपन हिसाब से व्यवस्था बनाए के रखना है, अगर पानी कम हो गई या सूखा की स्थिति आएगी तो एक बार देखिए सरकार भी चिंता करता है, और सरकार चिंता करता है कौन हिसाब से शासन मल्ला कर कती ले गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक बड़ा सुघर योजना है। एकर से यही है कि भाई ये अंतर्गत जो खेती किसानी कर क्षेत्र में जो नवाचार करते हैं, आधुनिक उपकरण कर उपयोग करते हैं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हैं, फसल विविधीकरण और कृषि आधारित उद्यमी ला बढ़ावा दिहल जाते, तो स्मार्ट खेती कर तहत कहीं नहीं तो जो मौसम आधारित जो कृषि सलाह होगी, उन्नत बीज कर प्रयोग करें, एकर संग संग जो जलवायु है अनुकूल बीज कर प्रयोग हो, ऐप कर माध्यम से कृषि जानकारी कर प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाते, इनमें किसान मन कर उत्पादन कर जो बात करी तो लागत घरेलू घटता है और आय बढ़ाने में भी मदद भेटा आते। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कर माध्यम से हमारा चाहे केंद्र सरकार होइस चाहे राज्य सरकार होइस स्थानीय जो हमार जरूरत है ओकर अनुसार खेती किसानी कर योजना ला बनावता है और संचालित करता है, और हमार किसान भैया बहनी बनला नवा नवा तकनीक और आधुनिक जो खेती किसानी होता है ओकर जानकारी देहल जाता है। तो ये योजना ला जरूर रौरे मन सुनी जानी, काबर की ये जो योजना है खेती किसानी पर बहुत ही लाभकारी है और टिकाऊ और मौसम कर चुनौती के प्रति कही सक्षम बनाए पर बहुत बढ़िया यदि भूमिका ला निभावत है। तो ऐसा समय में किसान भैया बहनी हो आज कर जो मौसम कर परिस्थिति ला देखत हन बदलत जाता है, स्मार्ट खेती ला हमन अपनाए करके और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कर जो सरकार कति ले चलत है ओला लाभ लेके हमार किसान भैया बहनी हो हमार फसल कर सुरक्षा कर सकत हन और संगे संगे आय में जो है वृद्धि कर सकत हन। तो ध्यान रखिए कि रौरे मन जो है आज कर इस बदलत मौसम में हमन ला नवा नवा जो तकनीक है नवा चार है ओला अपनाना बहुत जरूरी है। पारंपरिक खेती तो करते चहन लेकिन उनमें देखिए फसल हर हमार पहले जैसे नहीं हो पा रहता है, तो अब कर समय में हमन ला जरूरत है कि भाई हमन प्रशिक्षण ले या जो हमार कृषि वैज्ञानिक मना है उमन से सलाह ले, और आजकल तो देखिए हर घर हर कर हाथ है मोबाइल में भी हम लोग बरन बरन कर जानकारी देहत रहते, तो वह जानकारी ला हमन जो है ले सकत है और खेती किसानी में आगे बढ़ सकत है। जब हमन अगर नवाचार करत है या ये कही कि जो उन्नत बीज कर प्रयोग करत है, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई कर व्यवस्था करत है, मृदा परीक्षण करवा लेते हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से कृषि कर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं खेती किसानी कर, तो मुझे लगता है कि हमर जो है उत्पादन हर दिनों दिन बढ़त जाही, और जब उत्पादन बढ़ी और उत्पादन लागत में कमी घलू का ही तो ऐसा समय में हमन ला आय बढ़ाए में बहुत आसान हो जाही, हमर जो दैनिक जीवन में जो हमन काम करत हन उमें अधिक से अधिक अगर मेहनत करत ही परिश्रम करत ही तो कर लाभ हमन ला बगरा भेटा ही। तो ध्यान रखी आज कर जरूरत है बदलत मौसम में स्मार्ट खेती ला अपनाना। बाकी एक गोट और गोट करना चाहूँ भाई, देखिए सरकार कतिले कई ठे योजना चलत है उमें से एक बड़ा सुघर योजना है हमार अल्पसंख्यक कर कल्याण पर
प्रधानमंत्री के।

15 सूत्रीय कार्यक्रम। एक कार्यक्रम में देखिए 15 गो व्यवस्था बनाई है और देश कर जो हमार अल्पसंख्यक भैया बहनी मन है उमन बर जो है प्रधानमंत्री द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम संचालित करल जाता है। और ये कार्यक्रम कर उद्देश्य यही है कि भाई हमार जो अल्पसंख्यक भैया बहनी मन है उमन कर शिक्षा, उमन कर रोजगार, उमन कर कौशल विकास हो सके, जो बुनियादी सुविधा है और जो हमार अल्पसंख्यक समुदाय है उमन लब बेहतर से बेहतर जो है जीवन दे सके, यही दिशा में एक नई मंजिल योजना शिक्षा और कौशल पर लागू करल गई से है, जेकर माध्यम से कही तो मदरसा शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा जो हमार युवा भैया बहनी मन है उमन पर औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ल गई से है। ये योजना के तहत युवा मनला बरन बरन कर देखिए रोजगार परक जो प्रशिक्षण देहल जाता है जिगला कर के आगे जो है अपन रोजगार स्थापित कर सकता है, स्वरोजगार और रोजगार कर अवसर भी बढ़ता है में, और जो भी प्रशिक्षण लेता है रोजगार परक ट्रेनिंग लेता है उमन कर जीवन में बदलाव भी आता है। तो 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बरन बरन कर जो है जिसे छात्रवृत्ति कर गोट कह ले चाहे जो भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश करना है हमर देश में ही पढ़ना है या दूसर देश में पढ़े जाना है उकर पर भी ये जो है 15 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करल गई से है। संगे संगे कौशल प्रशिक्षण कर बात करी, महिला कर सशक्तिकरण और रोजगार सृजन कर भी बात कर सकते है। तो जमो तरह से कहीं नहीं तो ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम ला बनाल गई से है। एकर जो मुख्य उद्देश्य है किसान भैया बहनी हो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिमन मतलब कहीं आज जो विकास कर मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही है खास करके युवा मन, तो युवा मन ला मुख्य धारा से जोड़ के उमन ला आत्मनिर्भर बनाना है, उमन ला अपन एक जीवन बेहतर से बेहतर देना है। शिक्षा और कौशल विकास कोनो भी समाज कर प्रगति कर आधारशिला होते, जब शिक्षा बढ़े और कौशल हुए तो उकर से जीवन में बदलाव भी आते, हमार आय कर साधन भी बढ़ते। तो ऐसे कार्यक्रम युवा मन पर नई नवा दिशा लेके आते, नवा दिशा के साथ साथ एक ही कि उकर उज्जर भविष्य पर भी एक रास्ता ला देते। तो राष्ट्र कर विकास में अगर सक्रिय भागीदारी कर गोट करी तो निश्चित रूप से हमार युवा साथी मन निभाएं और ये जो अल्पसंख्यक कल्याण पर प्रधानमंत्री कर 15 सूत्रीय कार्यक्रम है नई मंजिल से शिक्षा और कौशल ला प्राप्त करें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ी और आगे बढ़ के जो है अपन जीवन में बदलाव लाही। बाकी मैं कहते रहें देखिए भाई गोट बात कर संग संग गीत गोविंद हो जाता अच्छा लगे, एगो सुखर अकन छत्तीसगढ़ी लोकगीत लाने हों तो ये गीत ला सुन लेते, एक बाद आगू गोट बात ला करबो।

हाँ तो देखी बड़ा सुघर इदे लोकगीत सुने गुलाब सिंह पैकरा उनकर सिंह तामनकर गाल गीत। किसान भैया भैया बहनी हो देखी भाई अभी कर जो समय चलत है ना सब कोई देखी खेती किसानी कति एकदम लगे ही और कोनो भाई धान कर खेती कर तैयारी करत है कोनो भाई मक्का लगाना है तो कोनो उड़द लगाना है तो मूंगफली लगाना है। बाकी आज कर जरूरत है कि हमन ला बरन बरन कर जो फसल उत्पादन लेहे बर भाई तकनीक ला जानना बहुत जरूरी है। तो वही में से देखिए अगर जो किसान भैया बहनी मूंगफली लगाना चाहते हैं और मूंगफली कर खेती करना चाहते हैं तो उमन पर जरूरत है कि भाई उन्नत तकनीक अपनाना। खास करके देखिए रौरे जानते ही कि मूंगफली भाई एक तिलहनी फसल है और कहीं तो कम लागत में और बढ़िया ये फायदा ला दे उत्पादन भी अच्छा होते और ये लाभ घलुक अच्छा भेटा थे। कोई भी किसान भैया बहनी हो जब हमन उन्नत तकनीक ला अपनाथन तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में बढ़वार होते। तो लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है काबर कि भाई हमन खेती तो करत हन लेकिन खेती के संग संग एक आधुनिक जो विधि है वह ला जानना बहुत जरूरी है। भाई कौन तरह से बीज होना चाहिए को कैसे बीजारोपण कैसे करना चाहिए संगे संगे खेत कर तैयारी कैसे करना चाहिए ओकर बर कौन तरह से माटी हर ज़्यादा अच्छा मानल गई है। तो हमारे वैज्ञानिक मन कहते हैं कि मूंगफली कर खेती पर सबसे अच्छा देखी जो पानी कर निकासी वाला जो ये कही कि जो बलोई दोमट मिट्टी है वह बहुत अच्छा मानल गई से है। हालांकि जो अलग अलग हमारे क्षेत्र है अलग अलग भाई माटी है लेकिन अगर बलोई दोमट मिट्टी अगर आए तो वहाँ फसल जो है बढ़िया हुई तो ये अच्छा भूमि या अच्छा जिला कही हमन किस्म कर चयन करना बहुत जरूरी है। अगर किसान भैया बहनी हो मूँगफली लगावत ही तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहला जो है बीज रौरे कर प्रमाणित होना चाहिए और प्रमाणित बीज कर संग बीज उपचार होना भी बहुत जरूरी है। रौरे मन भाई बहुत जन हमर आजकल जो आधुनिक किसान भैया बहनी मन है नवा किसान है युवा किसान है उमन मन देखिए बीज उपचार तो करते हैं लेकिन बहुत ऐसा किसान आज भी हैं जो बीज उपचार नहीं करें। तो उमन से मैं यही कहूँ कि भाई बुआई से पहले बीज कर फफूंदनाशी दवाई जिला हमन राइजोबियम कल्चर कथन उकर से उपचार

जरूर कर ली। एकर से होही का कि जो भी मूंगफली कर जो फल लगे वाला है या जो पौधा बढ़वार है उमे तरह तरह कर रोग देखे पर मिलेल, तो रोग कर रोकथाम होही और खास करके जो नत्रजन स्थिरीकरण जिला हमन कथन ओहर में ओकर पर भी सहायता मिली। दूसर बात, समय पर हमन ला बुआई करना है और अभी बतर मस्त है, जुलाई से लेके कहीं अभी अगस्त तक हमन बोए सकत ही। मानसून कर पहली बुआई जो है बरखा कर पहल जैसे होइस ना ओकर आधार पर अगर हमन कर देते ही तो ओकर अच्छा जो है अंकुरण भी होही, समय पर बुआई से पौधा कर जो विकास है ओहर अच्छा होही और उत्पादन तो बढ़बे करही। तो ध्यान रखी अभी समय बढ़िया है बतर है तो खेत कर अच्छा पहले तो देखिए भाई खेत कर तैयारी कर ली दो चार बह अच्छा लेकिन जो है खेत ला जोतवा दी ताकि माटी हर भुरभुरा हो जाए और भुरभुरा होने के बाद बढ़िया डहर बनाए के और जो है मूंगफली कर बीज ला रोपित करी। बात है कि देखिए जब बीज उपचार और समय पर बुआई, अगर हम समय पर बीज उपचार कर लेन समय पर बुआई कर लेन तो ये मान के चले कि हमन ला संतुलित उर्वरक प्रबंधन कर व्यवस्था भी करना बहुत जरूरी है। खास करके देखिए मृदा परीक्षण के आधार पर जो उर्वरक कर हमन जब उपयोग करती जैविक खाद चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व कर प्रयोग करती या माटी कर जो उर्वरता बनाए रखे में हर सहायता प्रदान करें तो ध्यान रखिए कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। और अगर रौरे करा ले हैं कि भाई हमारे माटी कर दशा का है भाई का चीज कर कमी है, अगर वो कमी ला पूरा खर थी तो ढेरेज बढ़िया हो जाए। और खास करके अगर पानी प्रबंधन कर बात करी तो जो भी मूंगफली में फूल आए और दाना बने कर समय ये कही कि पर्याप्त नमी कर होना बहुत जरूरी है। अभी कर बरखा जैसे होता है वो हिसाब से भी नमी बनता है तो अभी भी हमन किसान भैया बहनी हो मूंगफली कर जो है खेती हमन कर सकते हैं। और अगर देखी बरखा ढेरे आ जाता है और जल भराव होता है तो ऐसा में ध्यान रखिए कि पानी निकासी कर व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। काबर कि अगर जल भराव हो जाए तो फसल हर नुकसान हो जाए और नुकसान हो जाए तो हमन ला घाटे घाटा। तो ध्यान रखिए कि हमार जो जल प्रबंधन जिला हमन कथन मूँगफली में फूल आए से दाना बने के समय पर्याप्त नमी रहे ये बात कर ध्यान जरूर रखी। बात जहाँ खरपतवार और कीट नियंत्रण कर करी देखी तो जब अगर बुआई कर बाद 20 से 30 दिन बाद हमन देखी खेत कर निंदाई को गुड़ाई करी बहुत जरूरी हो जाते काबर के कई ठे से खरपतवार मन भी गाते बरन बरन कर किड़वा हो जाए बरन बरन कर कीट मन देखे पर मिले। खास करके भाई तेला माहू पतई खाए वाला कीट कर हमें हमेशा निगरानी करना पड़ी और अगर कोई ये तरह से अगर दिखत है तो जो हमार ये कहे कि कृषि विशेषज्ञ आएँ उमन से सलाह लेके उकर अनुसार हमन ला उपाय करना बहुत जरूरी है। खास करके देखिए इमें अगर मूंगफली कर गोट करी तो इमें जो रोग लगेल प्रमुख रोग कर बात करी तो देखिए ये टिक्का रोग होते अगेता टिक्का होएल पछेता टिक्का होएल वही कैसे रोग लगेल रस्ट रोग जे पतई मनहर भूरा हो जाएल और जंग लागल जैसे जो है धब्बा दिखाई दे लगेल, तना गलन रोग है पौधा कर तना सड़े लागेल और पौधा हर सूख जाते, एगोट कॉलर राट कथे ये पौधा कर जड़ और तना कर जड़ वाला भाग में जो है सड़न पैदा कर देते, एक उठो थे जड़ गलन रोग इसे जड़ जो जड़ रहे ओहर सड़ जाते और पौधा मन हर मुरझाए लगेल, चारकोल रॉट वही कसकत हैं ये अधिक गर्मी और नमी के कमी में ये रोग जो है अधिक देखे पर मिलेल। और मूँगफली में देखिए मोजक रोग भी लगेल तो पतई में हल्का गहरा रंग कर धब्बा दिखाई दे लगेल। तो एक बार किसान भैया बहनी हो अगर रोग प्रबंधन कर उपाय कर गोट करी तो ध्यान रखें कि रोग रोधी और प्रमाणित बीज कर उपयोग करी बुआई से पहले। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई बीजोपचार करी फसल चक्र ला अपनाना बहुत जरूरी है, खेत में जल भराव जहीन हो ये बात कर ध्यान रखी, अगर कोई रोग कर लक्षण दिखता है तो तुरंत जो है हमार गांव कर कृषि विस्तार अधिकारी होइन या जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनकर से सलाह लेके फफूंदनाशी या कीटनाशी दवाई कर प्रयोग जरूर करी। तो ये तरह से अगर रौरे मूँगफली कर खेती आधुनिक तकनीक से करब तो ये मान के चली चाहे फसल अच्छा हुई और उत्पादन भी रौरे कर अच्छा हुई और लाभे लाभ भेटा ही। तो मैं तो यही कहूँ कि जो भी किसान भैया बहनी हो मूँगफली कर खेती करना चाहता है उमन पर बहुत अच्छा आए दे अभी समय है अभी ले भाई एक योजना बनाए के और बढ़िया लेकिन खेती किसानी लग करी। बाकी मैं कहते रहें देखिए भाई
आज सोमवार का दिन और आज कर विशेषज्ञ क्रम में जो है एक आरती कुजूर हैं जो उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर से हैं, उनकर जगह मैं गोइड बात करें हूँ कि भाई आज कर समय सीरियन

कर खेती से लाभ कैसे हुए। तो सीरियन खेती करना भी बहुत जरूरी है ताकि हमन एक नवाचार कर सकी और खेती किसानी में आगे बढ़ी। तो एक से गोइट बात करें हो तो लगी ये ला सुन ली थी।

0: किसान भैया बहनी हो, देखिए आज हमारे बीच एक विशेषज्ञ आईन है, श्रीमती आरती कुजूर, उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर ले। तो सबसे पहले तो कुजूर मैडम राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। देखते कि अभी कर समय जो है श्री अनकर खेती कर प्रोत्साहन देता है शासन कति ले घलू और बड़ जोर शोर चलत, तो ये श्री अन खेती का हवे एक बारे में राउर चटी विस्तार से बताते हैं।
1: जो श्रीअन के जो खेती है इसमें मुख्य रूप से जो हम लघु धान्य की फसलें जो कहते हैं, जो पहले परंपरागत खेती के रूप में इसका उपयोग होता था, जिसमें मुख्य रूप से है कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ये सब जो लघु धान्य की फसलें हैं ये सब आती हैं। और ये पोषण की दृष्टि में देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें पोषण पाए जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम के गुण होते हैं, मैग्नीशियम होती हैं, लो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और जितनी भी ये बीमारियां हो रही है जैसे मधुमेह की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारियां हैं, जो बीपी शुगर की जो बीमारियां हैं, उसके लिए ये जो लघु धान्य की फसलें हैं ये बहुत ही उपयोगी होती हैं, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है, कैल्शियम रिच होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी फसलें मानी जाती है। और इसकी खेती आजकल हमारे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतायत में हो रही है। इसके लिए हम किसी भी प्रकार की भूमि पे इसकी खेती हम कर सकते हैं। हम जो ऊपरी भूमि है या फिर थोड़ी बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, उसमें भी लघु धान्य की जो फसलें हैं बहुत अच्छे से इस पर की जा सकती है। जिसमें हमारे यहाँ देखें तो यहाँ रागी की खेती बहुत अच्छे से होती है, जिसे हम मड़ुआ भी कहते हैं, मड़ुआ कहते हैं, तो इसकी खेती बहुतायत में अब हो भी रही है और इसका बहुत ज़्यादा अभी प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है इसकी खेती के लिए। तो इसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत नहीं होती है, किसान इसको बहुत सरलता से आसानी से अपने खेत में लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो बीज है, बीज की जो किस्म है, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो विकसित बीज हैं, इंदिरा रागी दो, छत्तीसगढ़ रागी दो, कोदो की वेराइटी हैं, अच्छी उन्नत किस्मी हैं, तो वो भी हमारे यहाँ मिल रही हैं, इसकी बीज हमारे छत्तीसगढ़ में आराम से मिल रही हैं, तो इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा खाद और बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में भी बहुत अच्छे से अपना उत्पादन देती हैं।
0: बड़ा अच्छा राउर बताते हैं कि भाई कोदो, कुटकी, रागी ये सब कर बहुत अच्छा तैयारी हमारा किसान भैया बहनी मन अभी कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और ये मैं कहूँ कि जो मुख्य मुख्य बात है श्री अनकर खेती में, मिट्टी का परीक्षण कर बात कही या फिर कौन जगह में लगाएं या पानी कर व्यवस्था कैसे हुए, खाद प्रबंधन कर बात करें कि एक पोषण क्यों तरह से हमन करें किसान भैया बहनी मन, ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन हो।
1: इसकी खेती के लिए जो उन्नत तकनीकी है, सबसे पहले तो उन्नत किस्म की वैरायटी हम उपयोग में लाएंगे, साथ ही इसका जो है, इसको जो बोने की विधि होती है वो दो तरह से अपन कर सकते हैं। एक तो किसान छिड़कवा विधि से इसकी बुवाई करते हैं और एक कतार में, लेकिन कतार की विधि से जो बुवाई करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है और इसे अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि छिड़कवा विधि में जो बीज की जो दर है वो अधिक लगती है और लाइन से लगाने में बीज की दर कम लगती है। तो हमारा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज इसका उपयोग करते हैं, और इसको लगाने के लिए हम कतार में, अगर हम पौधे से पौधे की दूरी 7 सेंटीमीटर रखते हैं और कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर पे हम इसको लगाते हैं, और समय समय पे इसकी निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही पानी देना चाहिए, सुबह के टाइम इस पर ज़्यादा पानी देना चाहिए ताकि शाम तक पौधे में, खेत में जल का भराव ना हो।
0: ये तो रही पानी कर व्यवस्था कर बात, खाद प्रबंधन के बारे में बताते हैं।
1: हाँ, खाद डालने के लिए सबसे पहले तो हमें खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और इसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और केचुआ खाद का उपयोग करना चाहिए, साथ ही साथ इसमें एनपीके जो मुख्य पोषक है, उर्वरक है, एनपीके जिसमें यूरिया, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का मिश्रण

0: उपयोग करना चाहिए।
1: हमारे ये सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से अभी कर समय में कौन कौन और खेती कर सकते हैं हमारे किसान भैया बहनी मन?
0: अभी तो वैसे जो लघु धान्य की फसलें हैं वो खरीफ की मुख्य फसलें मानी जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में रागी लघु धान्य की फसलें हैं वो उसकी खेती अभी भी की जा सकती है, लेकिन उसका सबसे पहले उसका थरहा बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है। अभी डायरेक्ट बीज से बुवाई संभव नहीं हो पाता है क्योंकि अब आधा खरीफ सीजन बीत चुका है, तो अगर अभी रागी की खेती करनी है तो सबसे पहले उसका अपन को नर्सरी तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद 20 से 25 दिन पश्चात इसकी मुख्य खेत में रोपाई की जाएगी।
1: श्री अनकर खेती अभी कर मांग है, आज कर जरूरत है, काबर की देखत हन किस तरह से बदलाव आवत है, और अभी बताएं कि बहुत एक से एक भाई भरपूर में पौष्टिक तत्व है, विटामिन है, विषय विशेषज्ञ के रूप में राउर का देखती कैसे मतलब आए वाला समय में एक कौन तरह से उत्पादन करें ताकि अधिक से अधिक लाभ हमारे किसान भैया बहनी मन प्राप्त कर पाए।
0: जैसे लघु धान्य की जो फसलें हैं हमारी परंपरागत हमारे दादा परदादा के टाइम से ही चला आ रहा था, लेकिन बीच में इसकी खेती को हमने छोड़ दिया, इसके महत्व को नहीं समझ पाए और इसकी खेती के लिए छोड़ दिए, लेकिन अभी के समय में इसकी उपयोगिता इसकी महत्व को देखते हुए शासन भी प्रोत्साहित कर रही है इसकी खेती के लिए, और आने वाले समय में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग देखा जाए तो बाज़ार में आज इसकी मांग बहुत ज़्यादा हो गई है, और शासन के द्वारा अब जो लघु खाने की फसलें हैं उसमें मूल्य समर्थन का भी दिया जा रहा है ताकि किसान इसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करे और मंडी में इसको खरीदा भी जा रहा है, तो आगे के समय को देखते हुए और इसके पोषण तत्व जो हैं इसमें उसकी महत्व को समझते हुए मैं सोचती हूँ कि इसकी खेती अब हमको इसके जो क्षेत्र हैं इसके क्षेत्र का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में, क्योंकि आज इसके जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं जैसे इसे आटा बन रही है, लड्डू बन रही हैं, जो पोषक इसके जितने भी बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वैल्यू एडिशन करके उसकी भी मांग आज हमारे बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसके महत्व को और इसकी मांग को देखते हुए किसानों को इसकी खेती अवश्य करनी चाहिए।
1: बहुत अच्छा संदेश राउर देहन कि भाई अभी कर समय में जे तरह से हमन देखत हन कि बरन बरन कर मिठाई में प्रयोग करता है और खान पान में बदलाव लाता है, तो जरूरी है कि श्री अन्न कर खेती करें किसान भैया बहनी मन और आधुनिक तरीके से करें और उच्च तकनीक और पोषण से जो लाभ है वो लाभ ला प्राप्त करें। राउर आज हमारे स्टूडियो में आये, इतना अच्छा जानकारी देहन, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं।

0: अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ, देखिए बड़ा सुघर संदेश रही, और यही संदेश कर संग में कहूँ कि एक और संदेश मैं अपन तरफ से बताना चाहूँ कि भाई देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है लागू करल गई से है, और इसमें खास करके जो है हमारे कृषि क्षेत्र में एक तरह से प्रबंधन कैसे करें ताकि खेती किसानी करके हमन अधिक उत्पादन कर सकी और टिकाऊ और लाभकारी जो है बनाए कर उद्देश्य से ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ला लागू करल गई से है। इमें अगर बात करिए कर जो उद्देश्य अगर किसान भैया बनी हो तो जो खेती में आधुनिक तकनीक कर ला हमन ला बढ़ावा देना है, प्राकृतिक संसाधन कर संरक्षण करना है, जे तरह से पर्यावरण आजकल बिगड़त जाता है तो जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उला बचाना है, फसल उत्पादन ला भी प्रभावी बनाना है। एकर तहत देखी अगर गोइट करी तो माटी परीक्षण कराना ताकि हमारे जो माटी हर स्वस्थ रहे, पानी

योजना जो है लागू करल गई से है, और इसमें खास करके जो है हमारे कृषि क्षेत्र में एक तरह से प्रबंधन कैसे करें ताकि खेती किसानी करके हमन अधिक उत्पादन कर सकी और टिकाऊ और लाभकारी जो है बनाए कर उद्देश्य ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ला लागू करल गई से है। इसमें अगर बात करिए कर जो उद्देश्य अगर किसान भैया बनी हो तो जो खेती में आधुनिक तकनीक कर ला हमन ला बढ़ावा देना है, प्राकृतिक संसाधन कर संरक्षण करना है, जे तरह से पर्यावरण आजकल बिगड़त जाता है तो जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उला बचाना है, फसल उत्पादन ला भी प्रभावी बनाना है। एकर तहत देखी अगर गोइट करी तो माटी परीक्षण कराना ताकि हमार जो माटी हर स्वस्थ रहे, पानी कर गोइट करी तो जल प्रबंधन भी बढ़िया हमन कर सकत ही, उन्नत बीज कर उपयोग करी और फसल चक्र ला जरूर अपनाई, और जो कृषि यंत्रीकरण है इसमें भी बदलाव नवा नवा विधि आता है, नवा नवा यंत्र आता है ओकर उपयोग करे कर एक बात कहल गई से है। खेती किसानी में किसान भैया बहनी हो मुख्य मुख्य जब बात करी नहीं तो जो हमार मृदा परीक्षण जो आधारित खेती होना चाहिए, मतलब हमार माटी में का चीज़ कर कमी है, नाइट्रोजन कर के, फास्फोरस कर के, पोटास कर के, गंधक कर, इला हमन ला जानना बहुत जरूरी है, तब जाके हमन अच्छा खेती किसानी कर सक करत थी या कर सकब। और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे आजकल समय है ड्रिप और स्प्रिंकलर कर जमाना, तो ड्रिप आधारित खेती करी, फसल चक्र और फसल विविधीकरण से हमार जो माटी कर जो उपजाऊ क्षमता है ओहूला हमन बनाए सकत ही। और खास करके देखी नहीं हमन अभी गोइट भी करत रहें कि बदलत मौसम में हमन लाए जरूरत है स्मार्ट खेती कर, जो मौसम आधारित जो कृषि सलाह है ओला हमन ला पालन करना बहुत जरूरी है। संगे संगे आज खेत बचाव अभियान देखी चलता है तो ऐसन में हमन प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ला हमन ला प्रोत्साहन देना है, आधुनिक जो कृषि यंत्र है ओकर उपयोग हमन ला करना है, तो निश्चित रूप से जो वैज्ञानिक कर मन हमन जो अनुशंसित करना है खेती किसानी पर एक योजना बनाईना है खेती किसानी कर प्रबंधन कैसे करी, तो ये ला अगर हमन अपनात है तो हमार लाभकारी और टिकाऊ बनाए कर आधार अगर कहीं नहीं तो हमन ये योजनाबद्ध खेती है, और योजनाबद्ध खेती करके हमन सरकारी योजना कर लाभ लेके हमार किसान भैया बहनी हो रौरे मन अपन जो आय है ओला दुगुना कर सकत है। और अगर जब नवाचार करब आधुनिक सोच के साथ रौरे जो है काम करब तो निश्चित रूप से खेती किसानी ला एक नवा दिशा मिली और रौरे मन कर जीवन में आर्थिक समृद्धि होगी, मतलब ये कही कि आर्थिक खुशहाली आई तो निश्चित रूप से खेती किसानी ला मन लगा के करी ताकि भाई अच्छा लागत कम हो और हमार उत्पादन जो है ज़्यादा हो, तो ये बात कर ध्यान रखिए। बाकी मैं मंडी भाव कर बात करूँ तो आज कर जो जानकारी हमन ला भेंटाई से है, राम तिल जो है 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, धान 2,190 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, तिल करगोट करी तो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं जो है 3,350 रुपये प्रति क्विंटल रही। और मौसम कर जानकारी ला तो खैर आखिरी में बताऊँ, बाकी मैं कहते रहें कि एक गोट सुघर अकन लोकगीत सरगुजिया लोकगीत है रौरे मन बरलाने हो, उम्मीद करत हूँ अच्छा लागी तो लगी ये गीत ला सुनी।

हाँ देखिए बड़ा सुघर ये दे गीत झिरी मिटी पानी बरसे, बढ़िया गीत रही जे लगाए रही राम नारायण मीरे और साथी। मौसम कर जानकारी कर गोट कली तो आज न्यूनतम जो है 25.5 डिग्री सेल्सियस रहीस, अधिकतम 36.5 डिग्री सेल्सियस। कल कर जो अनुमानित तापमान है न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस रहकर और अधिकतम जो है 37.2 डिग्री सेल्सियस रहकर। अब एक संग देखिए भाई चौपाल ले विदा लेकर बेरा होगी सह, तो मोला दा विदा, राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

स्वागत है साथियों, आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में। आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी शक्ति। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हम आपके हैं कौन से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीतकार हैं रविंद्र और संगीत निर्देशक हैं राम लक्ष्मण। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता मित्र हैं

झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के हनुमान और उत्तम जमदाड़े, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू और शिखा शिफाली, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से सोपान तायडे, नारायण इंगले, आशीष मुरहेकर, संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोड़के, मुजफ्फरनगर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना मुन्नी, चांदनी और नंदिनी कुमारी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेमी वामिका और वाणी थांडी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान शेख, अताउर रहमान शेख, हबीबुर रहमान, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से श्रीमती कमला देवी महोबिया, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम इरफान, इरफान खान और इमरान खान, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहा, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं का पसंद किया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुनिधि चौहान का गाया ये गीत फिल्म चमेली से। इस गीत के गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत निर्देशक हैं संदेश सांडिल्य। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र झीपा, कपिल झीपा और पूजा परिहार की, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु की, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हमारे श्रोता साथी हैं पंजाब रामटेके यशोधरा, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास और मीना श्रीवास, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश और प्रतीक वाकतरिया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, जालना मराठवाड़ से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी, दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा रंजू बाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहिना सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मल्लिक और मिट्ठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई।

कार्यक्रम के अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है रायपुर से विनोद वंडलकर वीणा और विविधा वंडलकर की, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये की, रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी नौरीन अंसारी और आफिया परवीन की, जौनपुर से हमारे श्रोता साथी हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरा तबस्सुम और

जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। मंडी डबवाली से हमारे श्रोता साथी हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तान्या नारंग। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद डोडवानी। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज, मिथिलेश यादव। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम और ज्योति शिवांश वर्मा। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग आकांक्षा और माही मलिक। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का ये प्यारा सा गीत, उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में। बोल इरशाद कामिल के हैं, संगीत है संदेश सांडिल्य का।

कार्यक्रम के अगले गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है बीड शहर महाराष्ट्र से पोपटराव कुलथे, हनुमंत कुलथे और प्रथमेश कुलथे की, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर की। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं संतोष खट से, विनोद खट से, गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अलवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। शाहूनगर यवतमाल से हमारे श्रोता मित्र हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लच्छे, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। चकरभाटा कैंप से डी आर नारवानी, रवि, चांदनी, खुशी नारवानी। फाजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, लाड़ी खेरा, शालिनी, तिवंशी, वाणी और आरबी खेरा। इन समस्त श्रोताओं के पसंद पर लीजिए सुनिए मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म चोरी चोरी का ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

आइए अब सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाड़ो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना ने। तेलंगाना निजामाबाद से इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख। यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार वन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और अवंतिका येले। बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, चंद्रेश गौहर, सुनील पाठक। गुजरात पाटन से धीरज वीरभारी। बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इजरार, नरगिस खातून। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान।

रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह सागर, बनी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। खंडवा से कैलाश फूलमाली। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं का पसंद किया हुआ ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत को पसंद किया है आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबेराव ने। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता साथी हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से बेड़ी नाना जी लामसे, मीना लामसे, तेजस जय लामसे, हर्षिता लामसे। पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान। बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराडे, वनीता, मोहम्मद हसनैन पवार। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरान और नरेश सिंह। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारी, पुष्पाताई नारी। आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर फिल्म लोफर का गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

प्राप्त हुई है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, अविनीता और रुद्र वर्मा की विलाई। छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन की। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संजय सिंधराम टेकराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह टेकाम, अरविंद सिंह टेकाम की। लैपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घनी अमित, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल, राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा। टोंडीलोहारा बालौद से डोमेंद्र, नेताम, गंगेश्वरी, नेताम, चंचल, कामेश और माहिर नेताम। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्म बागी का ये गीत। गीतकार हैं कुमार, संगीत निर्देशक हैं मीत ब्रोस।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूद

0: दर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
1: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार

0: और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
1: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काशफिन नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया

0: राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बाराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ

0: भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन फ्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किशोर कुमार का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म था कुदरत। गीत के बोल लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म कश्मीर की कली से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीतकार हैं शमसूल हुदा बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:25 हुए हैं। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशक हैं SD बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। वक्त हो चला है फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल की गूंज का।

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम ई मेल की गूंज में। आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो साथी शक्ति। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म फना से। आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने, संगीत से सजाया है जतिन और ललित ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सौंगा मगर लोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेमांश हेयांश चंदन। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, अनुराग मोहन। रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इंद्रा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर और कुशल शाह। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। जशपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज मोहम्मद, रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। धनौरी तेली वाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म सरफरोश से गाया है जगजीत सिंह ने, बोल लिखे हैं निदा फाजली ने और संगीत दिया है जतिन और ललित ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद मंदूरकर की, राजकोट से अजीता पाटिल और प्रमिला पाटिल की, जमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा की।

ईद की फरमाइश करने वाले हमारे ये भी श्रोता साथी हैं, मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता फलक लुबना और यश मंसूरी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक मानकर, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, सायमा नवाज, शरीफ नवाज, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, मुन्ना हिमाक्ष, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं फिल्म माई नेम इज खान का गीत। आवाज है शफाकत अमानत अली की, गीतकार है निरंजन। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये की। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद, पोपो रानी की। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां। सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती और परवीन गुजराती। उमरखेड़ से रजाज खान और आमिर खान। हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनित कुमार और सोनम वर्मा। धनोरा बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन, के मास्टर, शिवांशु, रीशु, अक्षय कुमार, वी चैतन्य, अभिषेक नायडू। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी। उमरखेड़ से अजीता मदारी और प्रमिला मदारी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय। अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं का पसंद किया हुआ ये खूबसूरत सा नगमा।

आइए अब सुनते हैं फिल्म टू स्टेट्स का गीत। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का। इस गीत को पसंद किया है उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैगरा, गुरनी पैकरा, करिश्मा सोमारसाय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा ने। इंदिरा चौक तखतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। बिरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, पी एस नहावकर। महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले, गजानन सालोनकर। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज की अंतिम गीत की फरमाइश करने वाले हमारे ये श्रोता साथी हैं, ग्राम लमकेना ब्लॉक कोटा जिला बिलासपुर से जय मानिकपुरी, अथर्व मानिकपुरी, सुमन सिंह, संदीप मानिकपुरी, बिट्टू मानिकपुरी, बी एन गुप्ता, जितेंद्र सिंह राठौर, सौरभ मालेवर, नवीन मानिकपुरी, सोनू मानिकपुरी, सौरभ यादव, संकेत मोहन शर्मा, अजय सिंह उट्टी, मृदुल, पंकज खरे, मयंक उपाध्याय, सुमित मोहन राम, रविंद्र रावत। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश, आशिफ शेख। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दशानी और निमित आहूजा। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म परदेश का गीत। आवाज़ है कुमार सानू की, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत है नदीम और श्रवण का।

फिल्म परदेश के इस प्यारे से गीत के साथ ही अब अपनी रेडियो साथी शक्ति को दीजिए कार्यक्रम ईमेल की गूंज से आज्ञा। नमस्कार। अभी आपने सुना ईमेल की गूंज, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में श्रीमती मंजू मेहता का सितार पर बजाया राग पूर्या कल्याण और लक्ष्मण फूल पगारी का तबला वादन।

कार्यक्रम सूर्यामिनी में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती मंजू मेहता का सितार पर बजाया राग पूरिया कल्याण और लक्ष्मण फूल पगारे का तबला वादन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म साथिया से। आवाजें हैं साधना सरगम मुर्तजा खान और कादिर खान की, बोल हैं गुलजार के, संगीत है A.R. रहमान का। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, आदर्श नगर मालौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरव और शैना शर्मा ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक ने, छत्तीसगढ़ बाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर प्रसाद वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने।

कार्यक्रम के अगले गीत को सुनने के लिए हमें खत लिख भेजा है बेलर गांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन ने। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप राजेश, राशि राजेश ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत सारथी और विजेंद्र ब्रजकांत सारथी। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर फिल्म रहना है तेरे दिल में का ये खूबसूरत सनगमा। आवाज़ है बॉम्बे जयश्री की और बोल है समीर के, संगीत है हरीश जयराज का।

लीजिए अब सुनिए दबंग फिल्म का ये प्यारा सा नगमा राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। गीतकार हैं फैज़ अनवर, संगीत निर्देशक हैं साजिद और वाजिद। इस गीत को पसंद किया है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, राही सरिता गवहानकर, सिद्धांत गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर ने। बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहानकर, वैशाली गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर और ध्वनि गवहानकर ने। देवगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता ने भवानी, आकाश ने भवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी और हनी ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राकेश श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन, सोनू, वंदना श्रीवास्तव ने। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे ने। और कुर्दी रोड मानपुर से हमारे श्रोता मित्र हैं विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद। आइए सुनते हैं इन सभी का पसंद किया हुआ ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत को पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाव खडसे, रक्षाताई खडसे, ललिता संजना खडसे, गणेश और कार्तिक खडसे, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, भाटापारा ततरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ज्योति और रेयांश ठाकुर, अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, बगबुढ़िया पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष और प्रोनामिका नेताम। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं के पसंद पर फिल्म तनु वेड्स मनु का ये गीत। आवाजें हैं मोहित चौहान और उज्जैनी की, बोल राजशेखर के हैं, संगीत है कृष्णन का।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत। आवाजें हैं फरहान सईद और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं कुमार

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये गीत। आवाजें हैं फरहान सईद और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं कुमार, संगीत निर्देशक हैं फरहान सईद। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्लाह अकरम नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, चांदनी चौगंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं का पसंद किया हुआ ये खूबसूरत सा नगमा।

0: फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के इस खूबसूरत से गीत के साथ ही कार्यक्रम मन भावन से अब अपनी रेडियो साथी शक्ति को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक